0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यशां।

我说你打竹马打来说别离苏哈西尼苏哈杜拉帕西尼

तुम हि प्राण शरीर बाहुते तुम्हें शक्ति।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 17वीं तिथि तदनुसार 8 जुलाई सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है और आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और सुजाता भट्टाचार्य को, फिल्म का नाम था एतबार। अगला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है अकेली हम अकेली तुम।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गर्व फिल्म में आप सुन रहे थे सुदीप नारायण, श्रेया घोषाल और शब्बीर अहमद को। अगला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और शान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हलचल।

अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम था हेलो ब्रदर। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
3: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
1: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
3: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
1: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
3: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
3: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
3: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
3: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
3: जी।
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
3: जी।
1: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
3: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
3: जी।
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
3: जी।
1: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
3: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
3: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
3: जी जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
3: इसके कई कारण है। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती
3: जी।
1: है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
3: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
1: जी।
3: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
1: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओं आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800 44 0559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
3: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते।

0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशुपालन। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वो निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एमयू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं।
1: ¶¶
0: ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खींच लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार ले। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा,
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टीन, एक चित्र हम भी खरीद ले।
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी अभी
6: अभी आप उमंग कार्यक्रम सुन रही थी। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 121.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
7: की गुणवत्ता को परख रहे हैं। श्री गडकरी दोपहर में बूंदी जिले में स्थित लबान इंटरचेंज पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ इस निरीक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीनों नेता कोटा के पास मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक बन रही दरा टनल का जायजा लेकर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बनाई जा रही है। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा का गोपालपुर मंडाना में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तथा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। राज्य में समान नागरिक संहिता 2026 UCC के प्रस्तावित प्रारूप पर आमजन से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न जिलों में आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों तथा शिक्षाविदों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पाली में वर्चुअल बैठक हुई। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं प्रशासन ने अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट, पंचायत समितियों और नगर निकायों के सूचना पट्टों पर QR कोड भी लगाए हैं। इनके माध्यम से आम नागरिक ऑनलाइन सुझाव दर्ज करा सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। विद्यार्थी, नवोन्मेषक, स्टार्टअप्स, शोधकर्ता, डिजाइनर, उद्यमी तथा हथकरघा पेशेवर पंजीकरण कराने के साथ ही अपने विचार संबंधित वेबसाइट पर साझा कर सकते हैं। चुनी हुई टीमें 1 अगस्त को अपने समाधान जूरी के सामने प्रस्तुत करेंगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई और कहीं कहीं जमकर बादल बरसे। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 9.5 सेंटीमीटर बरसात कोटा के रामगंज मंडी में दर्ज की गई। विभाग ने आज उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी तथा बहुत भारी बरसात की संभावना जताई है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। झुंझुनू में जल्द ही विवाह पूर्व संवाद केंद्र शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल तेरे मेरे सपने के तहत ये केंद्र बनाया जा रहा है। केंद्र में विवाह से पहले युवक युवतियों और उनके परिवारों को वैवाहिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। इस केंद्र पर आपसी संवाद, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेदारियां, विवाद समाधान, लैंगिक समानता और कानूनी अधिकारों जैसे विषयों पर मार्गदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना में पहले ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 जून निर्धारित थी। विभाग के निदेशक ललित कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं को सुविधा को देखते हुए ये तारीख बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके तहत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। FM 101.8 MHz पर दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम मोमल।

0: मुमल सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी शीतल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, बारिश का मौसम हो गया है और कई जगह तो झमाझम बारिश चालू भी हो गई है। लेकिन जब बारिश का मौसम चालू होता है तो आप देखिए, जो हमारे आसपास हरियाली होती है, हमारे आसपास का जो मतलब जीवन होता है, वो इतना हरिया आनंदमय हो जाता है कि बारिश का मौसम सभी को पसंद आता है। कई जगहों पर अभी बारिश होनी बाकी है और कई जगह पर आप देखिए बारिश कितनी अच्छी और बढ़िया हो रही है, और इससे मतलब जो आसपास का माहौल है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। लेकिन सिर्फ क्या बारिश के महीनों में ही हम इस माहौल को देखें? इसके लिए अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, हम हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं अगर हम उनको ध्यान दें, उसके ऊपर ध्यान दें, तो ये जिस तरह का मौसम बारिश के समय हमें मिलता है, वैसा ही मौसम हमें 12 महीने मिल सकता है। इसके लिए हमें करना क्या है कि जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, जैसे जल है, जंगल है, मिट्टी है हमारी, जो वन्य जीव होते हैं, ये सब हमारी पहाड़ है, झरने हैं, जहाँ पे हम लोग अक्सर पिकनिक पार्टियाँ करने जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ही गंदगी फैलाते हैं या वो बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं इन जगहों का, उसके लिए उनका जो सतत उपयोग करना है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं ना सखियों, वो भी इनका लाभ उठा सके। नहीं तो जो हम पहले जो कहते थे हमारे ज़माने में ऐसा होता था, वही बात हो जाएगी सखियों की जब हमारी आगे वाली पीढ़ी आएगी, तो आप उनको कहोगे हमारे समय में बारिश भी होती थी, हमारे समय में हरियाली भी होती थी। इसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है सखियों? हमें अपने जो दैनिक आदतें हैं, छोटे छोटे प्रयास जो है, उन्हें बहुत ही आसानी से मतलब एक संरक्षित करना है, और दैनिक करेंगे हम, हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे, हम भी करेंगे, तो हम इसका जो हमारी जो प्राकृतिक संपदा है उसकी हम देखभाल भी कर सकेंगे, साथ ही साथ उसका संरक्षण भी कर सकेंगे। अब सबसे ज़्यादा क्या होता है सखियों, हमारे घर में जैसे कचरा होता है, आप सोचिए कचरे को हम क्या करते हैं कि एक तो बाहर फेंक देते हैं कई बार, कई लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, कचरे को बाहर फेंकने से देखिए प्लास्टिक होता है उसके अंदर, कई तरीके के ऐसे केमिकल वाले कचरा भी होता है, कुछ भी रैपर होता है, वो गाय है या जो भी बाहर जो अन्य जो जीव होते हैं जो बाहर सड़कों पे रहते हैं, अगर उसको खा लेते हैं तो उससे उनको नुकसान होता है। तो अपशिष्ट जो हमारा जो कचरा है उसको कम करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो हम चीज़ों को सीमित करें। अगर मान लो आप घर पे जो आजकल देखिए कि स्टील की बॉटल्स भी आने लग गई है, पीतल तांबे की तो आती ही थी, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये रिसाइकल हो जाएगी, लेकिन अगर आप प्लास्टिक की बॉटलों का इस्तेमाल करेंगे, वो एक तो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होती है पानी की, साथ ही साथ उसमें क्या हो जाता है कि अगर मान लो टूट गई या हमने दूसरी ले आई या कोई डिज़ाइन की चार और बॉटलें ले आई, तो ये ना करके हम कम चीज़ों का इस्तेमाल करें और ऐसी प्लास्टिक को इस्तेमाल करें जिसका रिसाइकल हो सकता है। उसके बाद पुरानी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें फेंकने की बजाय अगर हम उनका दोबारा इस्तेमाल कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो लगती है कि अब हम उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दें और उसका पुराना वापस से इस्तेमाल करें, तो ये भी फायदेमंद होता है। इसके साथ कागज, कांच, प्लास्टिक जैसी जो चीज़ें हैं सखियों, ये सब रिसाइकल होती है, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए हम उस तरीके का प्लास्टिक यूज़ करें, वैसा कांच यूज़ करें जो रिसाइकल हो सके। आपने आजकल देखा होगा कि जो ठंडे की बॉटल्स होती है या कुछ रैपर्स होते हैं, चॉकलेट्स होती है, इनके रैपर पे या बॉटल्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि अगर आप इसको वापस से उसी शॉप पे देंगे रिसाइकल के लिए, तो आपको 10% या 15 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा उसकी एक्चुअल प्राइस से। तो ऐसा काफ़ी जगहों पर हो रहा है, ताकि जो चीज़ें हैं लोग बाहर ना फेंकें, कचरा ना करें, और इससे जो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ रहे। उसके बाद जल संरक्षण, जल संरक्षण तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए राजस्थान में अभी इस साल पानी की बहुत समस्या आ रही है और आगे भी आ रही है, क्योंकि हमारे राजस्थान में बारिश भी वैसे भी बहुत कम होती है, और जब तो जल का जो संरक्षण है वो हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो आप उसी जगह पे, नहीं तो अक्सर क्या होता है कई बार अगर खूब सारा पानी होता है तो हम बहुत सारा दिन भर घर को धोने में या पानी को इस तरह से करते हैं, ऐसा ना करके आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही पानी का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही जब से आप बच्चों को भी सिखाइए कि आप ब्रश कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा हाथ धो रहे हैं, तो नल को हमेशा बंद रखें, जब आप ब्रश कर ले तब नल चालू करें। नलों में अगर नल टपक रहे हैं तो वो देखिए वास्तु के हिसाब से भी घरों में नलों का टपकना खराब होता है और इससे पानी की बर्बादी भी होती है, तो उसको आप बंद कीजिए। साथ ही पौधों की सिंचाई के लिए अक्सर वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसका आप उपयोग कीजिए, जो वर्षा का जल होता है, अगर आपके पास खूब सारे पौधे हैं तो उनको संरक्षित कीजिए, पानी को संरक्षित कीजिए, ताकि उसका जो उपयोग है वो आप पौधों की सिंचाई के लिए कर सकें। और मैं आपको एक बात कहूँ, लास्ट ईयर महाराष्ट्र में भी एक किस्सा, पानी की बहुत किल्लत हुई थी और पानी की इतनी किल्लत हो गई थी कि मतलब लोगों के पास डेली यूज़ के लिए भी पानी मतलब सरकार को उनको प्रोवाइड करने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही थी। लेकिन उसके बाद उसका जो संरक्षण, जो सॉल्यूशन निकला है, जो समाधान निकला उस समस्या का, वो यही निकला। और आज काफ़ी शहरों में ये समाधान चल रहा है। उसका समाधान यही निकला था कि जल का संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है सकते हैं कि जो हमारा जो पानी है, बारिश का जो पानी है, उस सबको इकट्ठा किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है ताकि जो हमारे जो नलकूप होते हैं, जो हैडपम्प होते हैं, या वो सूखे नहीं, जो हमारी खोदियाँ हम खोदते, जो बोरिंग होते हैं, वो सूखे नहीं, वो गीले रहे और हमें 12 महीने जो है वो पानी मिल सके। इसके साथ साथ जो गैर नवीनीकरण ऊर्जा होती है ना, उसे भी हमें बचाना चाहिए, जैसे कोयला है, तेल है, इस पर जो निर्भरता कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर उसका हम निर्भरता हम कम करना चाहते हैं तो हमें बिजली के जो उपकरण हैं और लाइटें हैं उनको हमेशा काफ़ी कम करना चाहिए। होता क्या है कि अब जैसे घर में तो 10 लाइटें हैं, तो आपने अगर 10 लाइटें चालू कर दी तो इससे होगा कुछ नहीं, आपको लगेगा कि क्या हुआ, हम बिल भर रहे। बिल भरना कुछ नहीं होता, इसका सीधा सीधा जो होता है वो हमारी प्राकृतिक संपदा है, जैसे बिजली बनाने वाली जगहें होती है जहाँ कोयले से बन रही है, या आप सोचिए सोलर प्लांट से बन रही है, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप जितना हो सके अपने घर की बिजली के उपकरणों को, लाइटों को, जितनी जहाँ ज़रूरत हो वहीं चालू कीजिए। बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में सिखाइए, इससे क्या होगा कि हमारी जो ऊर्जा है वो बचेगी। और सबसे ज़्यादा जो होता है प्राकृतिक संपदा के लिए, जैसा मैंने आपको कहा, पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने पेड़ और पौधे रहेंगे वो हवा को शुद्ध करते हैं, हमारी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, हमारे जल के स्तर को बढ़ाते हैं। जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, जितना अच्छा मतलब आसपास का वातावरण होगा, उतना पानी का हार्वेस्टिंग भी बढ़ेगा, आसपास का माहौल अच्छा होगा। तो पेड़ पौधे जो है वो हमें बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, आपके घर के अंदर नहीं तो आप बाहर भी जाके लगाइए। साथ ही साथ प्लास्टिक का उपयोग सब्जियों में, आज भी आपको कह रही हूँ, प्लास्टिक हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम सुबह ब्रश से लेकर रात को सोने तक करते हैं, तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज़ में। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल आप अपने घर में बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आप कपड़े के थैले अपनाइए, आप रसायन मुक्त चीज़ें अपनाइए, जैविक खेती जो होती है आप उससे जो चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक खेती जो बोलते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए खाद्य में। तो अगर खाद्य पदार्थों में भी अगर आप जैविक खेती की जो चीज़ें होती है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे और प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कम कर देंगे, तो ये भी हमारी प्राकृतिक संपदा को देखभाल करने के लिए, बचाने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। और सबसे ज़्यादा वायु का जो प्रदूषण होता है उसके लिए अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, कोशिश कीजिए कि अब देखिए हर जगह तो हम पैदल नहीं जा सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतना हम देखिए, अब बीच में अभी हमारे देश में भी ऐसी जो आर्थिक दुविधा हुई थी, आप सोचिए कि जो बाहर के युद्ध, बाहर के देशों में युद्ध के कारण हमारे यहाँ भी थोड़ा सा डीजल पेट्रोल की कमी के कारण जो हमें कहा गया था कि थोड़ा सा इस्तेमाल उसका कम करना चाहिए, लेकिन जब धीरे धीरे परिस्थितियाँ सही हो गई, सब लोगों ने वापस जो पहले की तरह अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए अगर आपके घर से आसपास की दूरी तक आपको जाना है तो आप ना स्कूटी या टू व्हीलर की जगह आप पैदल जाना ज़्यादा प्रिफर कीजिए, यह आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। और हम इससे एक हमारे जो देश की प्राकृतिक संपदा है उसको बचाने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए एक छोटा सा कदम हम अपना लेंगे। तो सखियों बातें तो आपसे और भी मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले सुनाती हूँ आपको कुछ ज़रूरी संदेश और उसके बाद एक प्यारा सा गीत।
1: आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

सखियों अभी आप सुन रहे थे फिल्म इशकिया का ये प्यारा सा गीत जिसे गाया था राहत फतेह अली खान ने। सखियों हमने बात की थी कार्यक्रम की शुरुआत में कि किस तरीके से हम अपने घर के आसपास जो है उनको मतलब हरियाली है घर के आसपास के जो वातावरण है उसको शुद्ध कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं अपने घर की तो घर का सपना जो होता है वो हर किसी का होता है, हर कोई चाहता है कि उसका खुद का अपना घर हो, चाहे भले छोटा सा घर हो लेकिन उसका खुद का घर हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती है या जिनका खुद का घर नहीं होता है या कई बार आप किराए के घर पर भी रहते हैं और आपके मन में ये मंशा आ जाती है कि काश हमारा भी खुद का एक घर होता। तो लोगों की इसी चीज़ों को देखते हुए या जो लोग हैं जिनके बेघर है या एकदम ही कच्चे मकान है जो मतलब किसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जैसे बारिश आ गई या आंधी आ गई इस समय उनके घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान जो हो जाता है उन्हीं लोगों को होता है और वो वापस से बेघर हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल चालू की है जिसका लक्ष्य है कि सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराना और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये योजना मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है सखियों। पहली जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये और अगर मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई ऐसे भी लोग होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में किश्तों के रूप में दी जाती है ताकि वो अपना जो पक्का मकान है बना सके। इसके अंतर्गत जो आपको सामाजिक जो पात्रता होती है ग्रामीण क्षेत्रों में वो पात्रता यही है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर आपको चयन किया जाता है लाभार्थियों का कि जो आपका आर्थिक रूप से आप मतलब किस तरीके से आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी है और साथ में जाति जनगणना भी इसमें की जाती है कि आप किस जाति से रहते हैं साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी आप लोग आसपास के लोग आपके साथ कैसे आपका व्यवहार है इन सबको देखकर ही लाभार्थियों को जो है चयन किया जाता है। और जो दूसरा पार्ट है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब शहरी योजनाओं में क्या होता है कि शहरों में तो देखिए काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं उनके लिए साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार भी होते हैं जिनका मतलब छोटे मोटे धंधे करके या छोटे मोटे काम करके जो लोग अपना घर चला रहे हैं किराए के मकानों में रह रहे हैं जिनका खुद का पर्सनल कोई घर नहीं है तो ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी सरकार ने 5 साल के नए चरण की शुरुआत की है। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग निम्न आय वर्ग जिनकी बहुत ही निम्न आय वर्ग है जैसे कोई मजदूर है या कोई दिहाड़ी पे काम करता है या किसी की शॉप वॉप के अंदर जो काम करता है ऐसे निम्न आय के वर्ग और साथ ही मध्यम आय वर्ग के लोग जो है उनको भी शामिल किया गया है। ऐसे लोग जिनका छोटा मोटा धंधा है और लेकिन वो खुद का ना तो वो बेघर है ना ही वो कच्चे मकान में रहते हैं बल्कि उनका जो किसी के घर में किराए से रह रहे हैं उनका खुद का कोई पर्सनल घर नहीं है तो ऐसे लोगों को जो है सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी योजना दी जाएगी और घर खरीदने या उसके निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए भी आप लोगों को क्या है कि इसके लिए आवेदन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको इसमें आवेदन करना होगा और अगर उन्हें लगेगा उनको सारे अपने फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट आपने जमा कर दिए और सरकार को लगेगा कि आप इस योजना के लाभार्थी

योजना के बारे में अपने आसपास के ई मित्र में जाके जानिए, और अगर आप उसके लाभार्थी होती हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जी जी जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तो आप उन्हें भी इस योजना के बारे में बताइए। अब आगे भी आपसे सखियों और भी बातें करते रहेंगे, लेकिन आपका मनोरंजन भी तो करना जरूरी है, तो आइए आप सबको सुनाती हूँ एक प्यारा सा गीत।

सखियों, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में ये प्यारा सा गीत जिसे फिल्माया गया था फिल्म दिल तो पागल है में। अब हम बात करेंगे सखियों, जैसे मैंने आपसे बात की कि प्राकृतिक संपदाओं को हमें कैसे बचाना चाहिए, तो देखिए कि आजकल बारिश, मतलब जो हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, आप देखिए पहाड़ों पर जा रहे लोग और समुद्र किनारों पर चले जाते हैं या बड़े बड़े पहाड़ों पर, झीलों पर, झरनों पर, जलाशयों में जाते हैं। तो जब हम समुद्री इलाकों पे जाते हैं, जब समुद्र के आसपास हम जाते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग एक तो ध्यान नहीं देते हैं और कई बार समुद्र की लहरों के साथ कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, क्योंकि समुद्र जितनी शांति से समुद्र रहता है, आप देखिए महासागर जो जितनी शांति से वहाँ रहते हैं, अचानक से वहाँ पर एकदम से तेज उफान आने लग जाता है हवाओं का। तो अगर ऐसे समुद्री इलाकों पर आप लोग घूमने जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि आप देखिए कि हमारे भारत में काफ़ी जगह है जहाँ पे समुद्र, अगर आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी समुद्र है, उड़ीसा के अंदर आप बॉम्बे घूमने जा रहे हैं, आप द्वारकाधीश जा रहे हैं, ये सब समुद्री इलाके, समुद्र तटीय इलाके हैं। और यहाँ पे जितना अच्छा घूमना लगता है, गोवा जाएंगे आप वहाँ पे भी समुद्र है, मद्रास चेन्नई चले जाइए, चेन्नई में काफ़ी समुद्र है। तो लेकिन घूमना बहुत अच्छा है, लेकिन घूमने के साथ साथ अपने परिवार की अपनी देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको एक तो जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है वो समुद्र के अंदर नहीं फेंकनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ भी प्लास्टिक की खाने पीने का जो सामान लिया वो हमने फेंक दिया, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि समुद्र जो होते हैं वो भी हमारी एक प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी सफाई के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो हम यही कर सकते हैं कि हम लोग उसको साफ ना करें तो उसको गंदा भी ना करें। इसके साथ साथ आसपास के जो तट होते हैं वहाँ पे भी कई बार बीचेस पे हम लोग घूमने चले गए, हमने कुछ खाने पीने का सामान है वहाँ फेंक दिया कि हाँ क्या कौन देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सारा सामान पानी से बह के जाता है और ये हमारे जो है नुकसान करता है। और बच्चों के साथ भी अगर हम घूमने जा रहे हैं तो बच्चों का भी आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए, आपको खुद को भी ध्यान देना चाहिए कि लहरों के साथ मजाक अच्छा नहीं होता। सखियों, लहरें जिस साइड से लहरें आ रही है पानी की, आप उससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। अक्सर क्या होता है, हम मस्ती मजाक में या किसी को बताने के चक्कर में हम लोग खुद अपना ही नुकसान कर लेते हैं और कि कोई ना कोई दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है। इसके साथ ही साथ पर्यटन के दौरान आपको, मतलब कहा भी जाता है स्थानीय स्तर पर कि भाई आप लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, और स्थानीय पर्यावरण वाले जो है उनका आपको उन संगठनों का समर्थन करना चाहिए। आप देखिए कि मैं भी उड़ीसा में जब जगन्नाथपुरी गई थी वहाँ पे बीचेस है, तो वहाँ पे बीच में इतनी साफ सफाई है, उस साफ सफाई यही है कि वो जो वहाँ के आसपास की जो स्थानीय पर्यावरण के जो संगठन है वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, और वहाँ के लोगों को भी समझाया जाता है कि आप लोग यहाँ पे कचरा ना फेंके और पूरी मतलब अच्छे से रहिए, और अगर आपने कचरा वचरा वहाँ फेंक देते हैं तो कुछ फाइन लगा जाता है। तो आप यही है कि अगर कुछ ऐसा ना हो इसके लिए आपको थोड़ी जागरूकता रखनी चाहिए, और अब साथ ही साथ स्थानीय पर्यावरण जहाँ पे भी आप घूमने जा रहे हैं जो भी संगठन है उनका जो है वो समर्थन करना चाहिए। इसके साथ समुद्री जीव जो होते हैं, आप अगर गोताखोरी कर रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, तो उस समय भी आपको समुद्री जीवों से थोड़ी सी सुरक्षित दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आप बहुत अच्छे गोताखोर हैं या बहुत अच्छी तैराकी करते हैं तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीव है, जीव जंतु, आपको भी गुस्सा आ सकता है, उन्हें भी गुस्सा आ सकता है, तो इसलिए उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें और ना ही उन्हें परेशान करें। तो अगर अगली बार आप कभी भी

समुद्री तटीय इलाकों पे घूमने जाए तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि जो हमारे जो समुद्र है वो भी साफ रहे, सुरक्षित रहे और उनको भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो सखियों, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाती हूँ एक प्यारा सा गीत।

सखियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल मांगे मोर का ये प्यारा सा गीत जिसे गाया था केके ने। सखियों, हम महिलाओं को अक्सर एक बहुत आपने देखा होगा कि महिलाओं को जैसे कमर दर्द होता है या वजन बढ़ जाता है, कई बार उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो ये सब समस्याएं जब महिलाओं को अक्सर होती है, काफ़ी महिलाओं को ये चीज़ें होती है। आप देखिए कि 25-30 साल की उम्र से भी कई महिलाओं को ये समस्याएँ चालू हो जाती है। तो ये जो समस्याएं होती है अक्सर होती है थायराइड के कारण। महिलाओं में थायराइड जो होता है एक तरीके का रोग होता है, वो थायराइड जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो थायराइड जो रोग है वो अक्सर महिलाओं में होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खासकर मैं महिलाओं के सखियों को कह रही हूँ कि आयोडीन युक्त जो पदार्थों का जो सेवन होता है वो करने से हमारे शरीर को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलता है सखियों वो यही होता है कि थायराइड ग्रंथि के समुचित जो कार्य हो, जैसे मस्तिष्क का विकास है, शरीर की सामान्य वृद्धि है, वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव हो जाता है। तो सखियों, आपको तो मतलब थायराइड का जो है कि मतलब थायराइड है तो आपको आयोडीन युक्त पदार्थ जो है वो खाने चाहिए। साथ ही साथ घर पे जो बच्चे होते हैं हमारे छोटे, उनके जो शारीरिक विकास और उनके जो मानसिक विकास के लिए भी उन्हें आयोडीन युक्त पदार्थों का सेवन कराना चाहिए। क्योंकि देखिए कि जैसे महिलाएं जो होती है उनको थायराइड हार्मोन्स के निर्माण जब उनके शरीर में होते हैं तो इससे उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो कभी इस तरीके से नियंत्रित हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो कई बार महिलाओं को क्या है, कभी वजन बढ़ जाता है, कुछ महिलाओं का थायराइड में वजन कम हो जाता है या सूजन आ जाती है। तो थायराइड का अगर आपको सही संचालन अपनी बॉडी में करना है या किसी आस महिला को ये सब करना है तो उन्हें आयोडीन युक्त आहार जो है वो ज़्यादा अपने जो डाइट शैली होती है, जो आपका खानपान होता है, दैनिक दिनचर्या होती है खानपान की, उसमें आप सबको शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं छोटे उनको भी आयोडीन युक्त, जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी आयोडीन युक्त जो है पदार्थ है उसका सेवन कराना चाहिए। तो देखिए गर्भावस्था के समय में और बचपन में ही बच्चों को अगर आयोडीन युक्त पदार्थों का जो सेवन कराते हैं तो वो उनके मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है। और इससे बच्चों की जो बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और बच्चों को जो सीखने की क्षमता होती है, उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बेहतर होता है। आपने देखा होगा कई बार बचपन में जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आयोडीन युक्त पदार्थ नहीं खिलाया जाता है या उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण कई बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो इसीलिए गर्भावस्था के समय अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तब भी डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप आयोडीन की जो है आयोडीन युक्त पदार्थ लीजिए। और ये अगर आप लेते हैं तो इससे आपके जो शरीर का जो तापमान होता है उसको भी स्थिर रखता है। इसके साथ साथ आपको एनर्जी जो होती है वो होती है। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी आयोडीन पदार्थों का सेवन जरूरी होता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है उसमें ये बहुत सहायता देता है। अब बात आई कि आयोडीन युक्त पदार्थ का तो सेवन करना चाहिए, लेकिन आयोडीन युक्त पदार्थ में हम क्या खाएं? तो इसमें यही होता है कि आयोडीन अगर शरीर में सबसे ज़्यादा चाहिए, आयोडीन प्राप्त करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका नमक तो है ही। नमक का सेवन तो हम करते ही, नमक का अति सेवन भी नहीं करना चाहिए, नमक का एक लिमिटेबल सेवन करना चाहिए। और प्राकृतिक रूप से अगर मान लो आपको आयोडीन है कि नमक तो अब हर खाने में डलता है, उससे कैसे मतलब उसके अलावा हम क्या चीज़ें खा सकते हैं हमारी बॉडी के लिए? तो उसके अलावा जैसे आप हैं तो सी फूड है, अगर आप मान लो मांसाहारी है तो आप सी फूड जो समुद्री भोजन होता है जैसे मछली होती है, शिविर मछलियाँ होती है, इनका आप सेवन कर सकते हैं। और अगर आप शाकाहारी है आपको ये सब नहीं खाना तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है वो होता है हमारे घर में दूध, दही, पनीर, इन सब में आयोडीन होता है। तो डेयरी उत्पाद हमें खाने चाहिए। एक आप ले सकती है, अगर आप अंडे खाते हैं तो आप अंडों का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्जियां जो होती है उसमें आप देखिए कई लोग कहते हैं कि मतलब आलू कितना नुकसानदायक होता है, आलू नहीं खाना चाहिए, लेकिन सखियों आलू के छिलके, आलू अगर आप छिलका सहित खा रही है तो उससे जो सब उसके अंदर जो आलू की जो छिलका होता है उसमें भी खूब आयोडीन होता है। तो आलू है और कई ऐसी जो सब्जियां होती है, पालक होती है, इसमें भी आयोडीन होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये भी आयोडीन युक्त होती है। तो इन सब का जो सेवन है आप कर सकते हैं और इससे आपकी बॉडी को बहुत ही आयोडीन युक्त जितने भी पदार्थ हैं अगर आप इनका सेवन करेंगे तो इससे शारीरिक मानसिक विकास होगा, आपका थायराइड अच्छे से चलेगा, आपके अंदर एक अलग तरह की

एनर्जी आ जाएगी, और बच्चे भी जो है उनको भी आप इन सब पदार्थों का सेवन कराइए। तो सखियों आगे भी आपसे और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तेरे प्यार में दिल
1: सखियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पुली नंबर वन का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। अब सखियों, हमने काफ़ी बातें कर ली सामाजिक रूप से, आर्थिक, मतलब काफ़ी ऐसी बातें कर ली। अब हम बात करेंगे हमारी सखियों का जो सबसे अच्छा विषय होता है, खुद को निखारने के बारे में। जी हाँ सखियों, अक्सर आप देखिए गर्मी का मौसम धीरे धीरे जा रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि गर्मी में हम इतने परेशान और झुलस जाते हैं घर के कामों से कि हम हमारे चेहरे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी बाहर किसी ब्यूटी पार्लर में जाके कोई बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा फेशियल कराने की या उसकी ज़रूरत है। आप घर पर भी अगर आप चाहें और कुछ डेली रूटीन, जो स्किन रूटीन होता है उसको आप फॉलो करें, तो चेहरे पर आप प्राकृतिक रूप से आपके जो निखार है वो अपने आप आ जाएगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी त्वचा को पोषण देना है और उसे हाइड्रेट रखना है। तो मैं कुछ ऐसे, मतलब ऐसी कुछ टिप्स आपको आज देना चाह रही हूँ कि जो इससे आपके घर पर ही जो चमकता हुआ चेहरा है वो अपने आप आपको मिल जाएगा। आपको इसके लिए किसी पार्लर में जाने की या कोई महंगे क्रीम या प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो आपके डेली रूटीन में होना चाहिए, वो है पानी। जी हाँ सखियों, सबसे ज़्यादा होता है भरपूर पानी आप पीजिए। कम से कम दिन भर में आप 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। पानी पीने से क्या होता है, हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं हमारे शरीर से और हमारे त्वचा से जो हानिकारक टॉक्सिक होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और जितना ज़्यादा पानी पीएंगे आप देखिए आपके चेहरे की और त्वचा में एक अलग ही प्राकृतिक चमक आ जाएगी। उसके साथ अगर हमें घर पे ही कोई फेस मास्क प्राकृतिक रूप से बनाना है तो आप एलोवेरा जेल होता है, आप घर पे अपना एलोवेरा आप उगा भी सकते हैं, और नहीं तो मार्केट से आप हर्बल एलोवेरा जेल तो ले ही आइए और उसमें शहद मिला दीजिए, और दोनों ही त्वचा के लिए बेहतरीन है। एलोवेरा से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और त्वचा शहद जो होता है वो हमारी त्वचा को नमी प्रदान करता है। तो इन्हें बराबर मात्रा में आप मिलाकर 15 मिनट के लगा लीजिए और फिर ताजे पानी से चेहरा धो लीजिए। आप देखिए आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाएगी, साथ ही दाग धब्बे भी धीरे धीरे मिटते जाएंगे। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो होता है वो हमारे चेहरे के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन सी में आप ताज़े फल है जैसे संतरा है, नींबू है, इसका आप सेवन कीजिए। साथ ही साथ आप हरी सब्जियों को भी अपने आहार में शामिल कीजिए। जितना ज़्यादा विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे अपने शरीर में उतना ज़्यादा आपकी त्वचा जो है चमकदार बनेगी। अब कई बार कहते हैं कई लोग हमारी त्वचा मतलब इतनी डेड स्किन हो जाती है गर्मी में कि वो साफ़ ही नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक स्क्रब बताती हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप क्या कीजिए, आप ओट्स और थोड़ा सा दूध या दही का पेस्ट बना के चेहरे पे हल्के हाथों से स्क्रब कर दीजिए। इससे आपकी जितनी भी डेड स्किन है ना सखियों वो निकल जाएगी और साथ ही साथ आपकी त्वचा है वो खिल उठेगी। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए वो है योगा और प्राणायाम। जी हाँ सखियों, रोज़ाना 15 से 20 मिनट तक अगर आपने योगा या प्राणायाम की, जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये अगर आपने डेली किया तो इससे आपकी बॉडी में जो है शरीर में रक्त का संचार हो जाएगा और चेहरा जो है वो एक अलग ही तरीके से चेहरे में चमक आ जाएगी। और इसके अलावा आप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि हमें इस रूटीन को फॉलो करना है। तो अगर हम जितना इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो त्वचा है वो चमकदार बनेगी। तो सखियों, ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। अब सखियों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी और अंतिम गीत।

सखियों, अभी आप सुन रहे थे ब्लफ मास्टर का ये प्यारा सा गीत। अब सखियों, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं अपनी बातों को आगे भी जारी रख सकूं, तो अपनी रेडियो सखी शीतल को दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

0: also quoted on IRGC spokesperson as saying that the country's air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta. Says India's participation in temples conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS women ministerial meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of U.S. strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे

0: कपड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
0: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार तीन अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत

0: हिरासत में है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़ गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ चल डमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमरीका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई

0: तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर रहा। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आरोग्यम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं स्वच्छता ही स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर दामोदर खत्री से तृप्ति भाटिया की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। वादे के मुताबिक आरोग्यम कार्यक्रम के इस अंक में एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके समक्ष लेकर विशेषज्ञ महोदय को। तो इस बार हमारे साथ हैं सेवा निवृत्त और जैसलमेर शहर के जाने माने चिकित्सक श्री दामोदर खत्री जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका
3: नमस्कार
2: जी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बीमारियों की चपेट में जब इंसान आ जाता है तो वो कोशिश करता है कि ये केन प्रकरण इनसे बाहर निकले, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अगर पता हो कि फलाने मौसम में किस प्रकार से खुद का ख्याल रखा जाए तो हम काफी सारी चीजों से बच भी सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान में कि बारिश का मौसम अपनी दस्तक दे रहा है, तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चे जो हम देखते हैं कि अक्सर बारिश में भीगे या ना भीगे, लेकिन मौसम के प्रभाव की वजह से वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो किस प्रकार से माताएं नवजात शिशुओं का और या छोटे जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे बच्चे, उनका इस मौसम में विशेष ख्याल रखें।
3: देखो, ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर
2: जी।
3: आजकल और कहा गया है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, रोकथाम ही सबसे बड़ा सबसे अच्छा उपचार है
2: जी।
3: और जो बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग, ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कम होती है, तो इस इम्यूनिटी कम होने के कारण थोड़ा बहुत जो भी इन्फेक्शन है उनको जल्दी जकड़ लेते हैं और जिसके कारण संक्रामक या अन्य तरह की बीमारियां हो जाती है।
2: इन चीजों में हम तो ये चीज समझ गए कि इनकी इम्यूनिटी कमजोर है, ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम स्टार्टिंग में ऐसा क्या दें या उनका ऐसा क्या ख्याल रखें कि वो बार बार बीमार ना पड़े। क्योंकि डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों में देखा जाता है जैसे स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, छोटे बच्चे, वो बार बार छुट्टियां लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो जो भी मौसम आए वो बीमार पड़े ही रहते हैं, तो इससे उनकी हेल्थ का तो लॉस होता है, पढ़ाई का लॉस होता है, और मानसिक तौर पे जैसे जैसे बड़ी क्लास में पढ़ते हैं उन्हें बार बार सुनना पड़ता है कि तुम तो बीमार पड़े ही रहते हो। तो ऐसा क्या लाइफस्टाइल में हम चेंजेस करें बच्चों की कि ऐसा उनके साथ ना हो?
3: देखो, हाइजीन इज ओनली

0: भी हेल्थ, हाइजीन और हेल्थ एक दूसरे के पर्यावरण शब्द होते हैं
1: जी।
0: और जितनी भी बीमारियां होती है 60% से ज्यादा बीमारियां होती है पुअर हाइजीन के कारण। हाइजीन, पुअर हाइजीन का मतलब जिसके अंदर गंदगी हो, अस्वच्छता हो, अपने शरीर की व्यक्तिगत गंदगी हो, घर की गंदगी हो, मोहल्ले की गंदगी हो, और साथ गंदी नालियां गंदी हो, तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो विषाणु और जीवाणु है या परजीवी है, मलेरिया के जो पैरासाइट है, वो पनप जाते हैं और उसकी वजह से बीमारियां पकड़ लेती है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हाइजीन अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता हो तो 60% से अधिक बीमारियां का पुनः स्वतः ही उसका निवारण हो जाता है, वो बीमारियां होगी ही नहीं। दूसरी बात है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, पोषण। आजकल जैसे फास्ट फूड का जमाना है, तो फास्ट फूड में फास्ट भोजन करते हैं। फास्ट भोजन का मतलब जो भी मैदे की चीजें हैं, बर्गर है, मैगी है, और क्या क्या दूसरे जो चीज है, तो इन चीजों का, हाँ, जो भी होती है मैदे की, इन चीजों का सेवन करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशनल उसकी वैल्यू कम होती है और उसका पोषण कम मिलता है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है
1: जी। तो इस मौसम में आपके अनुसार जो घर का खाना होता है वो ज्यादा श्रेष्ठ है?
0: घर का खाना हर मौसम में सबसे उत्तम है, हर मौसम में घर का खाना उत्तम है। इसे अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, मिलावटीपन नहीं होता है, और वो स्वस्थ रहता है और सस्ता भी पड़ता है
1: जी। बिल्कुल, जैसे आपने स्वच्छता की बात बताई, तो अक्सर एक आदत देखी जाती है कि लोग अपने घर को तो साफ रख देते हैं, लेकिन वो खुद ही अपनी गली को, मोहल्ले को गंदा करते हैं। अगर आप किसी भी घर के में जाएं, तो घर में, गलियों में जो भी कचरा है वो ज्यादातर घर के लोगों के द्वारा ही बाहर फेंका जाता है, और इस वजह से भी हम देखते हैं कि नालियां हैं उनमें जो जल का प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाता है, और अगर जमा हुआ पानी है तो वो मेरे ख्याल से प्रथम कारण बनता है मच्छर जनित बीमारियों का।
0: सही बात
1: जी। तो इसमें एक ये चीज कही जाती है कि जब हम छिड़काव करते हैं दवाइयों का, तो उससे हमें नहीं रोकथाम होते हैं, लेकिन दूसरा एक और देखा जाता है कि इन दवाइयों के छिड़काव से भी बच्चों को और बुजुर्गों को कहते हैं कि सांस की समस्या शुरू हो जाती है, तो ये सही है या मिथ है?
0: नहीं, कुछ तो तकलीफ तो होती है जहाँ तक, है ना, जो, लेकिन जहाँ तक हो सके कि पहले वो नौबत आवे ही नहीं, तो इसका मुख्य कारण पानी में, जो पानी का जो बहाव है उसमें रिकॉर्ड आ क्यों रही है, तो उसका कारण है कि आजकल जो वातावरण का प्रदूषण है, और वातावरण प्रदूषण मुख्य जो रोल है प्लास्टिक का है, ठीक है, तो प्लास्टिक के कारण, पॉलिथीन के कारण सारी जो नालियां होती है अवरुद्ध हो जाती है, गटर अवरुद्ध हो जाते हैं, और उनके अवरुद्ध होने के कारण पानी का बहाव रुक जाता है, पानी ठहर जाता है, उस ठहरे पानी के अंदर विभिन्न प्रकार के मच्छर है, जीवाणु विषाणु पनपते हैं, और जो हमारे बीमारियों के लिए, हमारी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। तो सबसे वातावरण प्रदूषण जो हो रहा है पॉलिथीन के कारण, और इसके अलावा पॉलिथीन की जो अपन बाजार से जो सामान लाते हैं पॉलिथीन के अंदर लाते हैं, तो वो भी एक तरह की बीमारियों को आमंत्रित करता है
1: जी। तो इस मौसम में मच्छरों की जो बीमारियां हम देखते हैं कि बढ़ती हैं, तो जरा आप बताएं कि डेंगू मलेरिया के अलावा और क्या तकलीफें इस मौसम में उत्पन्न हो सकती है?
0: मुख्यतः तो डेंगू और ये मलेरिया होता है, ये मुख्य मच्छर जनित है। इसके अतिरिक्त जो होता है वो क्या, उसमें क्या इसके बाद मक्खियां भी पनपती है,
1: ठीक
0: है,
1: बिल्कुल।
0: और हाँ, क्योंकि जब बरसातें आएगी ना, उसके बाद मक्खियां पनपेगी, और मक्खियां क्या होगी, एक जगह कहाँ पता नहीं, थोड़ी देर पहले मल पर बैठी है, मल के बाद अपने भोजन पर आ गई, भोजन से वापस कहीं और चली गई, तो उसके कारण संक्रमण जो का है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में संक्रमण होता है, और अपन बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और उसमें उल्टी है, दस्त है, अनेक तरह की बीमारियां भी हो जाती है। तो उसमें भी आपका स्वच्छता है, कोई भी भोजन रखो, ढककर भोजन रखो, नहीं तो मक्खियां उन पर आएगी और वो अपना भोजन दूषित करेगी।
1: घरेलू मक्खी भी बीमारियों का इस मौसम में खास तौर पे,
0: सब तरह की मक्खियां, जो भी मक्खियां होती है, तो मक्खियां एक जगह तो रहती नहीं है, मक्खियों के पांव पर रहना कोई ना कोई संक्रमण रहता है, अभी मक्खी कहाँ बैठी, थोड़ी देर उड़ के कहाँ आ जाएगी,
1: बिल्कुल,
0: तो उसकी वजह से संक्रमण का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है, जिसे हम बीमारी से ग्रसित होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टर साहब, हम पहला लेते हैं डेंगू को, डेंगू की रोकथाम के लिए, या हम कहें कि रोकथाम से पहले इसके बचाव के लिए क्या क्या हम प्रिकॉशंस अपना सकते हैं?
0: देखो प्रिकॉशन सबके एक जैसे हैं
1: जी,
0: अलग अलग किसी का प्रिकॉशन, मच्छर जनित जो बीमारियां होती है मलेरिया डेंगू, दोनों के लक्षण दोनों के जो है ना बचाव के एक ही तरीके है कि पानी ज्यादा पानी का ठहराव ना हो, और ज्यादा ठहराव होगा तो उसे मच्छर पनपेंगे, और मच्छर पनपेंगे तो विभिन्न प्रकार की मलेरिया या मच्छर जनित बीमारियां उत्पन्न होगी। और समय लगा वो आजकल क्या कि मच्छरों को के पनपने के रोकथाम के लिए के जो टांके हैं, टांकों के अंदर एक जला हुआ ऑयल भी है ना, उसमें डाल दिया जाता है जिससे कि ऊपर तेल की झिल्ली बन जाती है और मच्छर पनपते नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकारी जो कार्यक्रम चलते हैं NTDT वगैरह छिड़काव वगैरह, तो या पैराथान जो छिड़काव होते हैं, तो उसका अपन को जब भी सरकारी कार्यक्रम हो या सरकारी कर्मचारी अपने घरों में छिड़काव करने के लिए आए, तो मेरा निवेदन है उनको मना ना करें, उनको सहयोग करें, और जो घर में छिड़काव कराएं।
1: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आपने कहा कि कई बार क्या होता है कि कम समझ की वजह से या आजकल वहम की वजह से कि भाई पता नहीं कौन आ गए, पता नहीं क्या कर देंगे, तो लोग उसको कई बार भी मना कर देते हैं।
0: ये तो इसमें ये है कि सरकारी कार्यालयों जो जो होते हैं जैसे अधिकारी होते हैं, उनको चाहिए कि जब जो भी टीम जाए उनके पास प्रॉपर आई कार्ड होना चाहिए, ताकि उनके पहचान पत्र हो, तो वो क्योंकि आजकल क्या फ्रॉड भी बहुत होता है, समय को देखते हुए उनको पहचान पत्र भी इशू होने चाहिए ताकि किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो।
1: जी हाँ, को निश्चित वेशभूषा हो, पहचान पत्र हो, तभी हम किसी पे विश्वास कर सकते हैं। तो ये भी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत काम की बात है कि कोई भी व्यक्ति इस मौसम में एक सरकारी एक इस प्रकार से विभाग का बनकर और आ जाए तो ये भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, डेंगू के बारे में कहा जाता है कि जो डेंगू का मच्छर होता है तो उसकी हाइट सुनते हैं कि घुटने तक ही होती है, और वो सुबह 10 बजे तक ज्यादा उसका प्रभाव होता है। तो अगर बच्चे फुल बाजू के कपड़े पहने या पूरी टांगों तो है ना कवर करें, तो भी हम मच्छरों से बच सकते हैं।
0: क्या होता है कि डेंगू का जो मच्छर होता है ना वो भारी होता है।
1: अच्छा,
0: तो शरीर भारी के कारण ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं हो सकता।
1: जी
0: ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इस मौसम में ना हमेशा फुल बाजू के कपड़े और पहने हो, और रात को तो पंखा चला के सोएं, हल्की सी चादर ओढ़ के सोएं, मच्छरदानी अगर उपलब्ध हो तो मच्छरदानी लगाएं ताकि मच्छर की काटने की संभावना कम से कम हो।
1: जी हाँ, अगर हमें डेंगू या मलेरिया ऐसी किसी चीज के इंसान चपेट में आ जाता है तो इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकते हैं? ये सामान्य बुखार नहीं है, कुछ इसमें जाके चेक कराने वाली बात है ना?
0: देखो अपने यहाँ आजकल ये नॉर्म्स हो गया, जो भी बुखार आए जैसा भी बुखार हो सबसे पहले उसकी मलेरिया की तो जांच करवानी है, क्योंकि मलेरिया के अपन जो है ना मलेरिया ग्रसित क्षेत्र में रहते हैं, मलेरिया कई बार मलेरिया की महामारी कई बार अनेकों बार इसके जो एपिसोड आए हैं मलेरिया की बीमारी के, तो अपने एंडेमिक क्षेत्र में रहते हैं, मलेरिया होता रहता है। दूसरा कुछ वर्षों से डेंगू भी हो रहा है, तो जो भी अब बुखार आवे तो मलेरिया और डेंगू या चिकित्सक जो सलाह दें जांच के लिए उस जांच को इग्नोर मत करो, सारी जांचें कराओ, तो जांचें आएगी तो प्रॉपर उसका डायग्नोसिस हो पाएगा और डायग्नोसिस के आधार पर उसका इलाज हो पाएगा। दूसरा जो मलेरिया जो होता है मलेरिया वही बुखार, मलेरिया में बुखार आता है डेंगू में बुखार आता है, मलेरिया एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है डेंगू में भी आ सकता है। डेंगू में सिर दर्द ज्यादा होता है, डेंगू जो होता है डेंगू वाले में सिर दर्द ज्यादा होता है, आंखों के पिछले हिस्से में ज्यादा दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पांव टूटने लग जाते हैं, और कहीं कहीं क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो कहीं कहीं है ना अपने स्किन चमड़ी पर खून के धब्बे या नीले नीले नील जम जाती है, नील निशान चट्टे हो जाते हैं, तो ये डेंगू में ये ज्यादा होता है।
1: जी बिल्कुल, डेंगू हो या मलेरिया हो दोनों ही हमें दोनों का ही खुद के शरीर का इनसे ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और सबसे आसान तरीका क्या है, अगर बुखार आए तो किसी नीम हकीम से या घरेलू इलाज ना करके जैसा कि आपने कहा कि पहला डॉक्टर से चेक करवाएं, मलेरिया की जांच करवाएं, और यह निःशुल्क उपलब्ध है तो इसमें कोई समस्या भी नहीं होती है,
0: और उसी दिन या अगले दिन इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है,
1: रिपोर्ट भी आ जाती
0: है, ज्यादा रुकना नहीं पड़ता।
1: जी जी बिल्कुल, तो डेंगू और मलेरिया कई बार हमने देखते हैं कि बुखार दवाई लेने से उतर जाता है पर कुछ समय बाद वापस से तबियत उसी बीमारी की चपेट में आ जाती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि वापस बुखार आ गया?
0: देखो इसके अंदर जो परजीवी होते हैं ना, कई बार क्या होता है एक बार तो बुखार उतर गया पैरासीटामोल गोली ले ली,

0: या तो मलेरिया की गोली ले ली है। अब एक्सरसाइज वापस होने के दो कारण है, एक तो आपने प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया। जो चिकित्सक को दिखाते हैं तो उसमें जितनी खुराक लिखी है पूरी की पूरी खुराक लो, उसके बाद एक आरटी होता है रेडिकल ट्रीटमेंट। रेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है उसका समूल नाश करने के लिए, बीमारी का समूल नाश करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की और दवाई दी जाती है। कई बार क्या है कि जो इसके परजीवी होते हैं रक्त में छुपे हुए रहते रहता है, एक बार तो मर गए लेकिन जब वापस प्रकट होते हैं तो वापस मलेरिया आ जाता है। तो उसके उसको रोकने के लिए एक रेडिकल ट्रीटमेंट नया एक थीम आया है, उसको समूल परजीवी समूल बीमारी को नाश करने के लिए एक रेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो रेडिकल ट्रीटमेंट का भी चिकित्सक के सलाह अनुसार लेना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने का ठीक हो गए उसकी क्या जरूरत है, नहीं उसको भी लेना है
1: जी। और डॉक्टर साहब इस मौसम में हम डेंगू मलेरिया के तो पेशेंट्स काफी देखते हैं, एक छोटे बच्चों में और बड़ों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है खुजली की समस्या, क्योंकि ये मौसम है तो गर्मी का, तो बारिश में नहाते भी हैं और कई बार नहाते नहीं नहाते मौसम की वजह से खुजली रैशेज और ये चीजें लाल चकते जैसे कि होना, ये तकलीफें बहुत बढ़ जाती है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। तो इन चीजों से हम किस प्रकार से खुद के शरीर को सुरक्षित रखें
0: कि इस मौसम आंखें लाल और एलर्जी के दो कारण होते हैं। इसमें एलर्जी कई तरह की हो जाती है
1: जी।
0: एलर्जी स्किन की भी एलर्जी होती है, ठीक है, साथ साथ एलर्जी सांस की भी होती है, ठीक है। तो इस समय ये वातावरण जो होता है ना, ये वातावरण जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें परागकण वगैरह कई होते हैं, तो उसमें क्या है कि उनके लिए अनुकूल होता है, तो वो क्या है कि वो पनप जाते हैं, तो परागकण या और भी कुछ होते हैं तो फूलों की जो ऐसा, तो वो उसमें वो क्या अपने शरीर के अंदर कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। तो उसकी एलर्जी की वजह से जो अपने सांस जैसे प्रवेश करते हैं तो सांस की तकलीफ हो जाती है, ये खांसी होती है, जुकाम होता है। इस समय क्या बैक्टीरिया वायरस भी है ना, इस मौसम में वो बहुत सक्रिय होता है
1: जी।
0: इस मौसम में बैक्टीरिया वायरस बहुत सक्रिय होता है, तो बैक्टीरिया वायरस ज्यादा सक्रिय होने के कारण भी ये उनको सांस की तकलीफ जुकाम खांसी होती है। और स्किन की बीमारियां होती है इस मौसम में, जिसकी गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी वैसी गर्मी चिपचिपी वाली गर्मी होती है, चिपचिपी वाली गर्मी से जो उमस वाली तो गर्मी होती है, जो अपने पसीने के जो छेद है वो पूरे खुल नहीं पाते, पसीना पूरा निकल नहीं पाता, उसकी वजह से खुजली की बीमारी होती है। इसलिए क्या सबसे बढ़िया है कि नियमित ढंग से स्नान करो और क्या क्या ऐसा दिन में दो और रात को सोते वक्त भी स्नान कर लो, ताकि जो है पसीने के जो छेद है स्किन पे सारे खुल जाए।
1: जी हाँ बिल्कुल। और बारिश के पानी में जब नहाने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कपड़े गीले रह जाते हैं, या हम देखते हैं कि लोग अधो वस्त्रों की सफाई का इतना ख्याल नहीं रखते, और कपड़े अगर सूख भी जाते हैं कई बार तो वो सूखते तो हैं लेकिन उनमें मॉइस्चर रह जाता है, तो अब धूप भी ना निकले।
0: तो अधो वस्त्र के लिए है ना, जो जैसे अंडर गार्मेंट जो होता है ना, तो उसमें क्या है कि जब ये थोड़े उसमें नमी रह जाती है, नमी की वजह से क्या है कि जांग के ऊपर के हिस्से में या बगल में तो वहाँ के वहाँ पर क्या दाग जैसी बीमारी हो जाती है। उससे बचने के लिए तरीका ये है कि अपने जो अंडर गार्मेंट्स है उनको धूप में सुखाएं, ठीक है, धूप में सुखाने के बाद जब सूखे तभी पहने, और नहाने के पश्चात अपने उस सूखे तोलिए से अच्छी तरह पहुँच लें ताकि नमी ना रहे। उसके बाद उसकी वजह अगर ऐसा करेंगे तो दाग जैसी बीमारियाँ होने की संभावना है।
1: वो तो है डॉक्टर साहब, पर कई बार तो क्या होता है धूप ही नहीं निकलती है, समस्या उस वक्त पैदा होती है जब धूप नहीं निकलती और तकलीफें बढ़ जाती हैं।
0: तो वो तो अपन फिर ऐसा है तो फिर कपड़ों को पंखे के नीचे रखो, फिर
1: सुखाना तो पड़ेगा,
0: सुखाना पड़ेगा।
1: और नमी
0: क्योंकि जो ऐसे एरिया में रहते हैं ना जहाँ धूप नहीं निकलती, तो उस एरिया में तो वहाँ तो इनकी बीमारियां ज्यादा रहती है। अपना तो सौभाग्यशाली की देश में धूप को अपन वरदान के रूप में लो, ठीक है, अभिशाप तो है ही लेकिन धूप है कि वरदान भी है, ठीक है, उसकी वजह से एक लू के अलावा कई बीमारियां होती नहीं है, या फिर धूप की वजह से एक वरदान भी है।
1: जी हाँ बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब कॉमन चीज है जिसको हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं कि ऊनाई ठंडाई लग गई, सर्द गर्म हो गया, ये भी कॉमन है कि क्योंकि हमारे यहाँ आज बारिश हो गई कल उमस हो गई तो उससे सर चढ़ जाते हैं और परसों से धूप हो गई, तो सर्दी गर्मी का जो हम क्विक उसके प्रभाव में आते हैं, या एसी से लोग बाग एसी में बैठते एकदम से तेज धूप में आ गए, और सर में चक्कर आना, उल्टी, जी दौरा होना और हेडेक होना,

0: भी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो इसका तो क्या इलाज
1: है? ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि बीच में जैसे है ना, जैसे एसी से बाहर धूप में निकलो, उसके बीच में एक ऐसा जोन होना चाहिए जो आपके शरीर के टेम्परेचर को इक्विवेलेंट बना हुए।
0: अच्छा।
1: लेवल पर लगे, आप धूप से सीधा आपने एसी में मत जाओ, एसी से सीधा धूप में, बीच का एक ऐसा जोन होना चाहिए। घर में या ऑफिस में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, बीच का ऐसा जोन होना चाहिए, जो जोन है ना बीच में वो एक लेवल मेंटेन करेगा, तुरंत उसमें मिल जाओ। सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, ये तुरंत जाएंगे तो अनेक तरह इस तरह की सर्द गर्म की जो बीमारियां हम हो जाती
0: है। जैसे गाड़ी है, हम गाड़ी से निकलते हैं तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से थोड़ा सा पहले एसी बंद कर दें,
1: एसी बंद कर दें पूरा, एसी मत,
0: ताकि थोड़ा शरीर का टेम्परेचर हमारा सामान्य होने लगे। फिर भी अगर डॉक्टर साहब लू लग जाए तो उसके कहते हैं कि लू उतारनी चाहिए, तो इसका एक सही इलाज क्या है?
1: लू को अपने अंग्रेजी भाषा में हीट स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर के शरीर का शरीर तप जाता है, ठीक है। शरीर तपने पर क्या उसका फिर मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसकी वजह से अंधेरा आना, आंखों के सामने सिर में चक्कर आना, बेहोशी होना, ठीक है। तो अच्छा, इसके गर्मी की वजह से शरीर में तरल पदार्थ पानी की भी कमी हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे केस के अंदर उसको लिक्विड खूब दो, छाछ है, चिकनजी है, केरी का पानी है, नारियल का पानी है, तरल पदार्थ अधिक से अधिक दो। और ज्यादा गर्मी से शरीर तपा हुआ तो भिगो के झाड़ा करते हैं ना,
0: तो
1: हाँ गलना झाड़ते हैं, तो कपड़ा गीला करके पूरे शरीर सिर पर पट्टी रखो ठंडे पानी की, पूरे शरीर को ठंडे पानी से उसको कपड़ा फेरते रहो जब तक सामान्य तापमान नहीं आ जाए। तो ये इसका ध्यान रखेंगे तो उसको लू जैसी बीमारियां नहीं है। और अधिक उसके बाद अपन मरीज को चिकित्सालय ले जाना चाहिए ताकि उसको डिले करनी नहीं चाहिए। चिकित्सा आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़े उसको ड्रिप भी चलानी पड़ सकती, क्योंकि पानी की कमी हुई है तो ड्रिप भी चलानी पड़ सकती है। पहले प्राथमिक स्तर अपने घर पर इलाज करो, उसके बाद तुरंत चिकित्सालय ले जाओ, ये तो कई बार लापरवाही की वजह से कभी नुकसान भी हो सकता है,
0: नुकसान भी हो सकता है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई हमारे बात की किस प्रकार से जो मौसमी बीमारियां फैल रही हैं उनसे हम खुद का ध्यान रखें। शुरुआत में आपने बात की थी बुजुर्गों की, क्योंकि छोटे बच्चों को तो फिर भी कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी होता है। बुजुर्ग लोग घर से बाहर कई बार नहीं भी निकलते तो भी घर में रहकर भी वो इस मौसम में जैसे छींके आ रही कंटिन्यू है ना, जबकि बाहर बारिश हुई है, उनका कितना भी ख्याल रखा जाए तो भी वो अपने आप को अपने शरीर को इनकी चपेट से नहीं बचा पाते हैं। तो क्या आपको सजेशन देंगे कि कैसे बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि सर्दी नहीं है तो गर्म कपड़े भी नहीं पहन सकते?
1: नहीं, इसके लिए ये कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्राय होता रहता
0: है,
1: उनको प्राय होता रहता है, वो चिकित्सालय में दिखाए, आवश्यकता अनुसार दवाएं भी लेवे, ठीक है। तो हम दवाई का सेवन करते रहेंगे तो उस तरह की वो तो डॉक्टर जो सलाह देते हैं ना, स्ट्रेटेजी जैसी और कोई गोली, एंटी एलर्जी गोली या सांस की गोली या कोई जरूरत हो तो एंटीबायोटिक या जो चिकित्सक को दिखाएंगे तो आवश्यकता अनुसार चिकित्सक उनको दवाई देंगे, उस दवाई को उनको सेवन करना है, बाकी सर्द गर्म से बचना उनको, ठीक है।
0: हाँ जी बिल्कुल। इसमें कुछ खान पान के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि सामान्यतः
1: देखो जो भी है पौष्टिक भोजन करना है, ठीक है। और पौष्टिक भोजन करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा पौष्टिकता बनी रहेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा।
0: और जब बुजुर्ग लोगों
1: को वैसे भी ज्यादा उनको जंक फूड की उनकी वैसी आदत नहीं है, ठीक है। हाँ उनको तो सामान्य है दलिया है खिचड़ी है, तो उनका वो तो क्या है कि वो उनका खुद का मनपसंद उनका भोजन होता है।
0: हाँ
1: तो उनके मन पर भोजन और उसमें किसी भी तरह का उनका और सुपाच्य भी होता है, खिचड़ी दलिया उनके लिए सुपाच्य होता है, सुप उनका आसानी से पच जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। हम बीमारियों से तो कई बार क्या खुद को बचा देते हैं या हम ध्यान देते हैं। एक आम समस्या देखी जाती है बारिश के मौसम में कि पेन होता है हड्डियों में जॉइंट्स में बारिश के मौसम में, जिसको अगर पुरानी तकलीफ है जैसे कोई गठिया का पुराना पेशेंट है या किसी की कोई डिलीवरी सीजरियन हुई है तो जो भी इंजेक्शन होते हैं जॉइंट्स होते हैं या पुराने जो दर्द होते हैं अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि वो वाले जो पुराने दर्द है वो इस मौसम में हमको तकलीफ देते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेन किलर या मालिश या कोई चीज विशेष?
1: ज्यादा दर्द करे देखो पेन किलर तो मिनिमम, पेन किलर कवर कर, पेन किलर देना।

0: आप भविष्य के अंदर गुर्दे में नुकसान करता है या और कहीं जगह ना पैरासिटामोल ऐसे कुछ ली तो वो भी लीवर गुर्दे में नुकसान करता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जो अक्सर बुजुर्गों को देखते हैं कि बिना पूछे अगर दर्द हुआ उनके पास दर्द की दवाइयाँ होती है, हम नाम किसी ब्रांड का नहीं लेंगे, वो उठा के खा लेते हैं कि कुछ नहीं होता इससे। तो आप इस बात को फिर से दोहराएं कि पेन किलर ज्यादा किस प्रकार से
0: पेन किलर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे गुर्दे की, लीवर की और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अनेक तरह की बीमारियां हो जाती है। इनको पेन किलर को बगैर डॉक्टर की सलाह के लिए के लेनी नहीं है, डॉक्टर सलाह दे उतनी ही लेनी है, बाकी किन पेन किलर को अवॉइड करना है।
1: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि ये हमारे आकाशवाणी के जो श्रोता आपकी इस बात को सुन रहे, तो जरूर एक जो डॉक्टर कहता है उस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है जी। और मालिश अगर की जाए तो कहते हैं कि इस मौसम में मालिश बढ़िया रहती है शरीर।
0: हाँ, मालिश अच्छी रहती है। हाँ, मालिश अच्छी, मालिश से क्या है कि जो ऊपर की जो चमड़ी है उस पर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, रक्त का प्रवाह बढ़ता है, शरीर में गर्माहट रहती है और गर्माहट रहने से वो जो दर्द की तकलीफ है वो कम हो जाती है। इसके अलावा तो तेल की मालिश करते हैं, तेल एक जो होता है ना तापमान का एक इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेशन। अच्छा। तो हाँ, तो तेल की मालिश करते हैं तो कि बाहर की जो ज्यादा ठंड है वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए पहले पुराने जमानों में लोग सरसों के तेल की मालिश करते थे फिर नहाते थे, तो सरसों के तेल से मालिश कर ठंडे पानी से नहाते थे फिर उनको ठंड नहीं लगती थी, क्योंकि जो ये जो जो ये अपने जो सरसों का तेल है या कोई भी तेल है अपने चमड़ी के ऊपर के ये तापमान अवरोधी का ताप अवरोधी का काम करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है, तो उससे क्या ठंडक है ना का एहसास कम होता था। तो तेल की मालिश निश्चित तौर से लाभदायक रहती।
1: तो इस मौसम में कौन सा तेल हम इस्तेमाल लें शरीर के लिए आपको
0: जो उनको, क्योंकि देखो सरसों का तेल वो थोड़ा तीखा होता है, जलन होती है, ठीक है, जिनको ऐसे जलन जैसा है वो सरसों का तेल काम में न लें।
1: तिल्ली का तेल क्या सही रहेगा?
0: हाँ, सब सब कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी,
0: तो सारे तेल है ना तापमान अवरोधक होते हैं, तो उसमें क्या है कि वो उसमें शरीर को ठंडक नहीं पहुंच सकता।
1: और जो स्किन में खिंचाव होता है सर्दियों इस जो बीच के मौसम में, उसकी भी स्निग्धता बनी रहती है,
0: उसमें उसकी चमड़ी की। हाँ, इलास्टिसिटी।
1: जी, तो डॉक्टर साहब ये तो चीजें हमने समय की रूप से देखी कि हम अपने लिए अपना अगर चपेट में आ जाए तो कैसे ख्याल रखें, और कुछ कुछ तरीके की जब चपेट में आए ही ना डॉक्टर साहब, योग और प्राणायाम क्या वो इन चीजों में किसी तरह से हेल्पफुल हो सकता है?
0: योग प्राणायाम का बहुत बड़ा इसमें उपयोगी साबित होते हैं। तो योग करने से और प्राणायाम करने से श्वास और हृदय और मस्तिष्क संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज का निदान हो जाता है, क्योंकि इसमें के सांस का योग के अंदर सांस का नियंत्रण होता है, सांस का जब और सांस लेने का जो गहरी जो सांस लेते हैं उसमें अधिकतम ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचती है, उससे अनेक प्रकार की व्याधियां मिट जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है इससे अगर व्यक्ति ध्यान में भी आ जाता है तो मानसिक तनाव अवसाद जैसी बीमारियों से भी वह बच जाता है। अवसाद से अनेक प्रकार की बीमारी होती है, जो हृदय की बीमारी को टेंशन में ज्यादा रहता है उसको हार्ट की बीमारी हो जाती है, टेंशन में रहता है उसको अपच जैसी बीमारी हो जाती है। तो मस्तिष्क सब पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, तो ध्यान और योग से मानसिक शांति भी होती है और उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियां उसको नहीं होगी।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि डिप्रेशन जो आपने अवसाद शब्द का प्रयोग किया वो इतना कॉमन हो चुका है जितना कि खांसी जुकाम, एंग्जाइटी और डिप्रेशन।
0: एंग्जाइटी,
1: हाँ,
0: तो पहले तो हम आजकल पहले सुनते नहीं थे। हाँ, आज देखिए पांचवी क्लास का बच्चा भी कहता है कि डिप्रेशन में आ गया, पांचवी क्लास का बच्चा
1: वही तो।
0: ये भी एंग्जाइटी में आ गया, हम तो पहले समझते एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है क्या है।
1: जी हाँ, सही कहा आपने, वर्तमान में ये शब्द मैंने कहा ना इतना कॉमन है जैसे किसी को खांसी जुकाम हुआ हो वैसे, और इसको ग्लोरीफाई किया जाता है कि वो बहुत टेंशन में है, वो बहुत तनाव में है। तो अगर सभी मुझे लगता है योग या प्राणायाम से जुड़े हैं तो वो आधी से ज्यादा स्वयं के दिमाग के द्वारा उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनसे खुद ही बच जाएंगे, ताकि
0: निश्चित
1: तौर पे ताकि हमें अगर एक स्वस्थ परिवार बनेगा तो वही एक स्वस्थ समाज की नींव बनेगा, और स्वस्थ समाज से ही हमारा देश जो है वो स्वच्छता की ओर या स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेगा। अगर देश के ज्यादातर युवा या बच्चे हैं वो बीमार ही रहेंगे तो वो देश की प्रगतिशीलता में अपना सहयोग भी कैसे करेंगे?
0: नहीं, स्वच्छ भारत रहेगा, स्वस्थ भारत रहेगा और फिर ये दोनों रहेंगे तो सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा, और सशक्त राष्ट्र तो फिर परम वैभव की ओर पहुंचेगा राष्ट्र को।
1: जी बिल्कुल। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे भी समय की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही है, तो कोई एक संदेश जो आप आज के विद्यार्थियों को देना चाहें, क्योंकि वो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो ज्यादातर मौसम की चपेट में आते हैं, महिलाएं घर पे अपनी रक्षा कर लेती हैं, बुजुर्ग कर लेते हैं, कोई व्यापारी वर्ग प्रतिष्ठान में ऑफिस में कर लेते हैं, पर बच्चों को तो आवागमन करना पड़ता है, तो कोई एक संदेश जिससे विद्यार्थी लोग थोड़ा बच जाएं सब तकलीफों से।
0: मेरा तो ये संदेश है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के पर्याय है, और स्वच्छ रहोगे तो कोई भी प्रकार का आपको संक्रमण नहीं होगा, और संक्रमण नहीं होगा तो 60-70 बीमारी 25% बीमारी से आप स्वतः ही बच जाएंगे। दूसरा संदेश यह है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं स्वास्थ्य संबंधी आए उसको नजरअंदाज न करें, जो भी उसका अपन अक्षरशः पालन करेंगे। सरकार की योजनाएं जैसे वो पोषण की है, मिड डे स्कूल मील का प्रोग्राम है, अंधता निवारण है, या अपने टीकाकरण है, जो भी राष्ट्रीय योजनाएं चलती है उस योजनाओं का पालन करेंगे, निश्चित तौर से अपन स्वस्थ रहेंगे।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत सार गर्भित और उपयोगी जानकारी आपने प्रेषित की। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आप हमसे जुड़े, आरोग्यम कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी बात को हमारे श्रोताओं तक पहुंचा पाए। एक बार फिर से दिल की तमाम गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप आरोग्यम कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
3: विविध भारती पर अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: सही सहेली
1: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
2: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
1: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हमें ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
2: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग, और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा।

0: लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है,
1: हाँ,
0: लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
1: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन ना हो हमारी मनचाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं। ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का भी मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा।
1: बिल्कुल, इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो अपने विचार हमें लिख कर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं।
1: बहुत
0: वरना बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
1: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे, लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
0: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
1: और साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी, जो बहुत फेमस है, कोटा डोरिया।
0: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है, और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती हैं।
1: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है, और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती है कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती है ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
0: अच्छा,
1: चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है, अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है, चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
0: बिल्कुल,

तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे।

हटे चांद, लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे, के दिल बन के दिल में

0: करते रहेंगे
1: तुझे प्यार करते ही करते रहेंगे
0: तेरे मन के दिल में
1: धड़कते रहेंगे।
2: जी तो गाना बड़ा अच्छा था है ना,
3: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
2: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन हुई हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं।
3: क्या बात,
2: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है, उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है। सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहे, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहे।
3: क्या बात है, यानी हमारी सखियों को हमारी सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना।
2: और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
3: बिल्कुल
2: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, और उद्घोषक जो खासतौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारी श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और तो मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है, वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां तारीफों में उलझ गई हैं, है ना। तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए, हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती है।
2: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है,
3: बिल्कुल
2: इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती है। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
3: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
2: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है, गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
3: क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है,

0: वो गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारी सभी सखियों और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है ना।
1: इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती है। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही है, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं। बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही है, सिर्फ बातें किए जा रही है, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा। हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को, उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाती, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा

0: करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं। शुक्रिया अदा करने वाले जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों सी महक फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है, तो शिकायत किस बात की, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं, ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
1: बिल्कुल बता देती है, लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी। ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
0: तो अभी गीत सुन ले।

0: राजनीति पर आ रही हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: जी,

0: ओहो।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
0: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना। तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन से खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी की 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास अपने जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुनाया गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा, जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ।

0: कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया।
1: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया, ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं इसलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
1: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
0: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं। लाइट शेड के सारे जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
1: और आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का चलन है। तो जैसे और जो चीजें ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
0: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है। पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी, बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है, जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मी में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। ताना और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया, खट कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
1: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होता है ना बहुत
0: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही।
1: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
1: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल,
1: और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
0: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
1: तो भाई क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है तो जहाँ बारिश नहीं है गर्मी है वहाँ के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुँचा दी जाए।

0: एक मीठी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती है कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं हो।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया मुझे।

0: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है, तो उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं, तो ये एक आश्वासन है।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के तीन शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की, जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
0: ये जो आपने तीन उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर हमें ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या हो?
1: क्या होगा, और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें, तो सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं
0: जी,
1: जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा, तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं भाई आपका ही काम मैं कर दूंगा कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रख को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता
1: है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल
0: जी,
1: है ना, सही कहा, और करनी में फर्क हो जाता है।
0: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़े। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नियत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही एक श्रोता लिखती है कि आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

मन पर आप प्यार अच्छा मुश्किल है।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल क्या बनाने वाली हो?
1: बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और इसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आंच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आंच धीमा पर तलने में तेल पिएंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए एक कप चावल को धोकर एक घंटा भिगोए, पानी को निथार कर चावल, दो चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस ले। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा

0: लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ है और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ है,
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने
0: बिल्कुल। लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और

0: पढ़ाई जाए और बातचीत की जाए, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: आज के मेहमान।
1: अथ स्वागतम
2: शुभ स्वागतम
1: अथ स्वागतम
2: शुभ स्वागतम
1: आनंद मंगल मंगलम
2: आनंद मंगल मंगलम
1: इति प्रियम।

0: आज के मेहमान श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राठी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विवेक भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राठी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपकी साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राठी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी,
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित निबंध है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें। तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है। व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपनी साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूं कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूं, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो भी संगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहां की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा।

0: जी बिल्कुल,
1: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूं, तो ललित बंध में बड़ी मिठास होती है। जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है मुझे लगता है मैं उस पर ललित बंध लिखता हूं, और वहां पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है, मुझे लगता है कि वहां मुझे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूं, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूं मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूं। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से, उसकी बड़ी रोचक कहानी है।
0: जी वो जानना चाहेंगे हम कहानी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
1: जी
0: कैसे प्रभावित कर लेता है।
1: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं, एक तो है कुल्हड़ की चाय जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तकालय से छपा है
0: जी,
1: और दूसरा है नयन और बानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाज आई है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे। लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरू हो जाता है, तो अपने आप वो व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है, तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा मन एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है।
0: जी, तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
1: आ जाता है।
0: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
1: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा, इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
0: जी, जी।
1: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
0: हाँ।
1: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके, और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
0: रेड्डी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
1: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: जी जी जी,
0: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: शंकर जी,
1: यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
2: जी।
1: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
2: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पल्वित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे, कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ ना, मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता। और मेरे

0: पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं, कालिदास लक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी, जी।
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी
0: जी, जी।
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी, तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा नयन नयन बिनु बानी। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर की मैं कहूं बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास, जीभ के पास नहीं नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले कह रहे कि गिरा नयन नयन बिनु बानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नयन बिनु बानी नहीं है, नयन और बानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीजें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकते हैं
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक है, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारे दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है
0: जी।
1: तो रायडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए
0: जी। मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं, बड़े मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
1: जी,
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।

0: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
1: जी।
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है क्योंकि यह हृदय पक्ष है। इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
2: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
2: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
2: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी,
2: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
1: जी।
2: एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की,
2: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय, मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो, बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी,
2: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
2: मध्य क्षामा चकित हरडी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
2: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
2: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी

0: दिया बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ। तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृद भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मत।
1: जी, तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद है, क्योंकि एक लेखक जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: जी,
1: ये हम समझ सकते हैं।
0: जी,
1: तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला
1: कभी भी, क्या बात
0: जी,
1: है फिल्म
0: जी,
1: पगला कहीं का था ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात करेंगे।
0: जी जी जी हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।
2: तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं

संग संग तुम गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे हो भुला न पाओगे, हो तुम मुझे हो

0: असंभव ही है।
1: जी।
0: अभी बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है, तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मंदाकिनी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है, तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो। 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई, मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूं मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाऊं, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहां जब पहुंचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: वो लोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूंगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेष अंक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेष अंक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
0: क्या बात है।
1: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज्यादा करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
0: जी।
1: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा, उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
0: जी।
1: उनकी तो एक गजल है,

0: जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना हो, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे,
1: जी जी जी,
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है।
1: जी बिल्कुल,
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसको
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ।
0: जी, 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं, और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं।
1: जी,
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल, तो रायडी साहब आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद है ना,
0: जी, जी, जी,
1: लगते हैं।
0: जी, जी।
1: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए तेरे।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या लेख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले, चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती है। उनमें गांव का पूरा स्पर्श, वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छोटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो इस संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था, और मिश्र जी में यह भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं, यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं, कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहां तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी वो दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की अवतार थी, कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा,
1: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया, तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन वेद का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
0: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते हैं, उसके बाद आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं
1: जी। मंदाकिनी जी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
0: जी।
1: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छूलो तुम मेरे गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद
0: है। बहुत सुंदर
1: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
0: आई सुन जी।
2: होठों से छूलो तुम मेरा गीत।

0: राइडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी, मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीजें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है, मुझे लगता है कि स्थायी नहीं है। पुस्तकें स्थायी हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं। ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थाई चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय, उनका बड़ा व्यापक

0: कहा है।
1: जी
0: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आजादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आए, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, ये योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ते हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उसमें सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है, और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है? कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उसकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं है। इस चीज को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है, और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है, और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
1: जी बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था, कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था, क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं, तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए। और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का, और उसका मैंने संपादन किया, और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी मुंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है, मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया, उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है, और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे, जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है, और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ, बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य या कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं, और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीजें आए, तो सोचता ये हूं कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आप पसंद का और सुनना चाहेंगे हम?
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, वो सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी की जो,
1: क्या बात
0: है, नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का अपना अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राडी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आज के मेहमान।
1: स्वागतम।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजे है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

साथियों आप अब सुन रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में आगीत। बुर्जुको के साथ समय निभाए, बुर्जुको के साथ समय बिताना उम्र अकेलेपन न दूर करना है और उम्र मानसिक रूप से सक्रिय रखना है और आपनो उम्र प्रति सम्मत अनुभव और पारिवारिक मूल्यों से सीखना या अनमोल अवसर देना है और उम्र साथ गुणवत्तापूर्ण समय बितावन के साथ सबसे बेहतरीन और व्यवहारिक तरीका है। उमरी कहानियाँ सुनो, बुर्जुग और पास जीवन रो अपार अनुभव हुई और उमरे जमाने की कहानियाँ संघर्ष और पारिवारिक इतिहास के बारे में पूछना और पारंपरिक खेल खेले। उमरे साथ घर के अंदर खेला जावन वाला खेल जिके में लूडो, शतरंज, ताश और कैरम है और यदि उमरे स्वास्थ्य अनुमति देवी तो उमान सुबह और शाम हल्की सैर कराउंड ले जाओ और उमरे साथ उमरी जवानी का पुराना गीत सुनना और पुरानी तस्वीर और एल्बम देखना, उमरी कोई पसंदीदा फिल्म भी देखना और उन्होंने आपने स्मार्टफोन या वीडियो कॉल करना और यूट्यूब चलाए देना और परिवार के सदस्य और साथ तस्वीरों साझा करना। बुर्जुग और बातों सुनन सु उमरे है महसूस होगी कि उमरे परिवार में महत्व और प्यार भी मिली। यदि आप बुर्जुग और साथ समय बेहतरीन तरीके से समय बिताना चाहिए तो उमरी रुचियों की है जिके में बागवानी, धार्मिक पुस्तकों, खाणो पकावनों और उमरी शारीरिक क्षमता कैदी चलनो फिरनो और परेशानियां तो कोनी। उमर इस घर मत समय बितावे और उमर साथ बाहर घूमने प्लान बनावे। दोस्तों अपनी बातों यूँ ही चलती रहते, उसे पहले सुनाऊँ फिल्म संगीत।

साथियों, आप अब सुन रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों वाली आवाज में आ गीत। बारिश रे मौसम में बीमारियों और हादसों से बचन मिली, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मच्छरों ने पनपन से रोकना चाहिए, बाहर तला भूलिया खावन से बचना जरूरी है, और मानसून के दौरान सुरक्षित रहने के लिए खान पान रो हमेशा ताजा और घर में बनोड़ो खाना चाहिए, और बाहर की खुली चीजों विशेषकर कटोरा फल चाट पकौड़ी

खावन से बचना चाहिए क्योंकि इनमें बैक्टीरिया और संक्रमण जल्दी हुई। पानी हमेशा उबलोड़ो और अच्छी तरह फिल्टर होयोड़ो पीना चाहिए ताकि पेट से जुड़ी बीमारियां हैजा और डायरिया को नहीं हो। मच्छरों से बचाव के लिए डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए घर के आसपास कूलर में पानी जमा न होने दें और सोने से पहले मच्छरदानी का उपयोग करें और फुल आस्तीन का कपड़ा पहनें। व्यक्तिगत स्वच्छता बारिश में भीगने के लिए खुद न अच्छी तरह से सूखा लेना चाहिए। पैरों ने हमेशा साफ और सूखो रखना चाहिए ताकि फंगल इन्फेक्शन न हो। और इलेक्ट्रिक सुरक्षा और खुले हुए तारों न बिजली रे स्विच बोर्ड न गीले हाथों से न छुए और कोई भी आपातकालीन मेडिकल सलाह सु LDFC ईगो और फॉरेस्ट हेल्थ केयर मानसून टिप में और विशेष स्वास्थ्य समस्याओं यात्रा में भी जुड़ी हुई सावधानियों रखनी चाहिए। दोस्तों अपनी बात तो यूँ ही चलती रहते हुए सु पहले सुनो एक राजस्थानी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान, एपिसोड नंबर 120।
1: एपिसोड 120, 120।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

गीत छन महु सबके परुसिगे चतुर सुवार विनीत।

जनक दशरथ सहित समाज जनवा से ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं ये भजन, हरिओम शरण का गाया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को, उसके बाद सुनेंगे जिले की चिट्ठी और उसके बाद आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलनीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार अलर्ट, बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2.25 लाख क्विंटल का राज्य बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की गुणवत्ता, एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की जमीनी स्थिति जानी। केंद्रीय मंत्री के साथ दिल्ली से NHAI और मंत्रालय के आला अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल भी रहा। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर चर्चा की। इस दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्र यानी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरे में अलवर जिले के पिनान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्री गडकरी से मुलाकात की। अलवर और दौसा के बाद केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी कोटा के लिए रवाना हुए। वे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास बन रही दरा टनल का भी जायजा लेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उनके साथ रहेंगे। अब से कुछ ही देर पहले तीनों नेताओं ने बूंदी के लबान में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा जिले के खातोली में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 71 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क निर्माण, संपर्क मार्गों के विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल सुविधाओं से जुड़े काम शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली नई सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत तथा संपर्क मार्गों से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। इससे आम लोगों का जीवन अधिक सुगम और सुविधाजनक होगा।
1: इस खातोली के जो सारा इलाका है, न रोड की समस्या रहेगी, न पीने की पानी की समस्या रहेगी, न बिजली की समस्या रहेगी। यहाँ की रोड सबसे हालत खराब हुआ करती थी, जो खराब है बरसात के बाद उसको युद्ध स्तर पर काम चलाकर उसकी रोड कनेक्टिविटी, पुलिया, पीने का पानी, बिजली, ये सारी सुविधाओं का जो बरसों से अभाव था वो अभाव भी पूरा करेंगे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज दीग बाईपास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बाईपास के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी। इस मौके पर श्री बेढम ने कहा कि बाईपास के बनने से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
2: यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि नगर में जाम की समस्या से निजात मिले और बाईपास का निर्माण हो। 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये बाईपास, जिसका मिट्टी का काम पूरा हो गया है, इसका हमने शिलान्यास किया है। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं, और भविष्य में भी जो जो आवश्यकताएं हैं, हम जनता की अपेक्षा पर खड़े होकर के उनके विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल और वित्त मंत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पौधों की वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में सचिवों की समिति की बैठक ली। इस दौरान विभिन्न योजनाओं, हरियालो राजस्थान अभियान और शहरी तथा ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़, जयपुर और कोटा जिले पौधरोपण अभियान में अग्रणी है। मुख्य सचिव ने बताया कि शहरी सेवा शिविरों में अब

0: तक 28,000 से ज्यादा पट्टे दिए जा चुके हैं। वहीं ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए 38 लाख से अधिक नागरिकों को फायदा पहुंचाया गया है। मुख्य सचिव ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ अलनीनो चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय और सतर्क है। उन्होंने कहा कि जून महीने में कम बारिश के बाद अब जुलाई में स्थिति में सुधार आया है। इससे देश में कम बरसात वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगरानी तंत्र पूरी तरह सक्रिय है। मॉनसून में देरी का सोयाबीन और कपास पर असर पड़ा है। किसानों को मक्का, बाजरा, मूंग और कम अवधि तथा कम पानी वाली फसलों की बुआई की सलाह दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जून महीने में चलाए गए खेत बचाओ अभियान के तहत 1,24,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे 80 लाख से ज्यादा किसानों तक सीधे पहुंच बनाई गई। उन्होंने बताया कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,75,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार किया गया है, जिससे किसी भी स्थिति में बुआई प्रभावित ना हो।
1: हमने 2-3 तैयारियां और की, एक तो बीज की कोई कमी ना रहे, और इसलिए हमने लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे, उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो, उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे के बाद आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी का ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई दिशा देगा। श्री मोदी मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारत इंडोनेशिया साझेदारी मजबूत हुई है, साथ ही भविष्य का महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने विशेष जांच दल SIT जांच का भी संज्ञान लिया है, जिसमें अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पीड़िता से संबंधित वीडियो और सामग्री को तत्काल हटाने को कहा है। देश भर में अब तक 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, करीब 5.25 करोड़ महिलाएं और 17 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान शामिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलकर देश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करना है, ताकि भारत को नशे की लत से मुक्त बनाया जा सके।

0: टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सलूम्बर जिले के जयसमंद क्षेत्र के देवपुरा में आज ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनों से ग्रामीणों की जांच की गई। इस दौरान 10 लोगों में टीबी के लक्षण मिलने पर उन्हें उपचार के लिए चिन्हित किया गया है। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट बताया है। बारां, झालावाड़ और कोटा में तेज बरसात का ऑरेंज, वहीं बाकी 33 जिलों में येलो अलर्ट है। कल सवाईमाधोपुर, कोटा और बारां में झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, वहीं 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की गतिविधियों में 10 जुलाई के बाद कमी आने की संभावना है। इस बीच आज अलवर, कोटा और बारां में बरसात हुई। भीलवाड़ा में भी दोपहर बाद गरज के साथ कुछ देर तेज बारिश हुई। धौलपुर में सुबह से ही रिमझिम बरसात का सिलसिला बना हुआ है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और उमस का दौर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से दौरा। राज्य सरकार का इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलनीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार का अलर्ट। केंद्र सरकार अलर्ट। बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2.25 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर झालावाड़ जिला संतरे की खेती के लिए अपनी खास पहचान रखता है। खूबसूरत स्थापत्य कला से बने किले और महल यहाँ की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत है। प्रदेश के दक्षिण पूर्व में बसा ये जिला इन दिनों मानसूनी रंगत में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बरसात से कई इलाके तरबतर हैं। खेतों में नई फसल की तैयारी शुरू हो गई है और किसानों के चेहरों पर अच्छी उपज की एक उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आज झालावाड़ जिले की चिट्ठी शुरू करते हैं। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्व संबंधी प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेयजल, बिजली, कृषि और अन्य विभागों के काम मौके पर किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने अधिकारियों को समय पर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भवानी मंडी और झालरापाटन में जनसुनवाई और अटल जन सेवा शिविर भी आयोजित किए गए। इन शिविरों में लोगों ने राजस्व, पेयजल, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, किसान सम्मान निधि और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। अधिकारियों को सभी प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं हाल ही में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई और अभियान को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुष विभाग ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, पौधरोपण के कार्यक्रम हुए। श्रमदान जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया और अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। खेल संकुल में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। इससे पहले झालरापाटन स्थित गोमती सागर और द्वारकाधीश मंदिर में प्रदेश में अच्छी वर्षा, कृषि समृद्धि और जन कल्याण की कामना के साथ विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। इसमें जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। उधर मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों की निगरानी, साफ सफाई और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कैंसर और सिकल सेल जांच, टीबी जांच तथा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कामों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम भी लगातार जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कृषि विभाग किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहा है। जिले में पेयजल, बिजली और सड़क संबंधी कामों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों को आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे री गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा कामारो जायजो ले वनसारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर किन्नो। राज्य सरकार ई चौमासा माय 10 करोड़ पौधा रोपणो तय किन्नो। पौधा देवण और रोपण रो काम मिशन मोड माथे। अल नीनोरी चुनौती रो सामो करण सारू केंद्र सरकार सावचेत। बीजारी उपलब्धता तय करण बाबत 2.25 लाख क्विंटल रो बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए नाबालिग टाबरी सागे यौन दुराचार रा मामला माए संज्ञान लीनो। 15 दिन माए रपट मांगी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रो दौरो किन्नो। वह सड़क री गुणवत्ता, एक्सप्रेस वे माथे हिफाजत री व्यवस्था और मुसाफिरा रा सुबिताओं जुड़िया हालात रो जायजो लीनो। केंद्रीय मंत्री दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मंत्रालय रा आला एहलकार सागे दौरो किन्नो। वह एक्सप्रेस वे माथे सड़क हादसा री तादाद माई कमी लावन रा उपाया ने बारा माई चर्चा कीनी। इन दौरान हादसा री शंका वाली ठोड़ा री पिछाण और हिफाजती मानका री पालना और कड़ाई करावन रा बारा माई चर्चा करी जी। अलवर जिला रा पिनान माई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी श्री गडकरी मुलाकात कीनी। अलवर और दौसा पाछा केंद्रीय मंत्री गडकरी कोटा सारू रवाना भया। मारो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व करने बन रही दरा सुरंग रोई जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इन दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वहां सागे रह वेला। थोड़ी देर पहले तीन ही नेता बूंदी जिला रा लबान माए राखी जिया कार्यक्रम माए शिरकत कीनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा जिला रा खातोली रे कृषि उपज मंडी माए राखी जिया कार्यक्रम माए करीब 71 करोड़ रुपए रा खर्च वाला विकास रा कामारी नींव रखी और पूरा भया काम जनता ने सौंपिया। आम आय सड़क बनावन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीवन रा पानी रा सुविधाओं जुड़िया काम शामिल है। ई मौके श्री बिरला कहो के आ कामाऊ न्यारा न्यारा गावा ने जोड़वा वाली नई सड़क बनावन और सड़क और पुलिया री मरम्मत और हल्का रा जुड़ाव ने तेजी मिलेला।
3: इस खातोली के जो सारा इलाका है, न रोड की समस्या रहेगी, न पीने की पानी की समस्या रहेगी, ना बिजली की समस्या रहेगी। यहाँ की रोड सबसे हालत खराब हुआ करती थी, जो खराब है बरसात के बाद उसको युद्ध स्तर पर गाज जलाकर उसकी रोड कनेक्टिविटी, पुलिया, पीने का पानी, बिजली, ये सारी सुविधाओं का जो बरसों से अभाव था वो अभाव भी पूरा करेंगे।
2: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज वारा रहवास माथे ऊर्जा विभाग रा अहलकारन सागे मीटिंग कर कामकाज रो जायजो लीनो। मीटिंग में बिजली री पूर्ति लगातार बनाई राखन रे बारा में चर्चा करी ची। ई सागे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना रा तहत काम में तेजी लावन रा हुकम दिया चिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम आज डीग बाईपास बनावन रा काम री नींव रखी। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी आ सड़क बनावण पर लगभग 60 करोड़ रुपया खर्च करया चावेला। वो बाईपास बन जावण ई हलका माए आवण जावण री व्यवस्था और चोखी बनेला। ई मौके श्री बेठम कहो के वो बाईपास बन जावण तरक्की रा नुआ गेला खुलेला।
4: यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि नगर में जाम की समस्या से निजात मिले और बाईपास का निर्माण हो। 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये बाईपास, जिसका मिट्टी का काम पूरा हो गया है, इसका हमने शिलान्यास किया है। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं, और भविष्य में भी जो जो आवश्यकताएं हैं हम जनता की अपेक्षा पर खड़े होकर के उनके विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे।
2: राज्य सरकार ई चौमासा में 10 करोड़ भत्ता पौधा रोपण तय कीनो है। ई सारू पौधा लगावण रो काम मिशन मोड माथा चलायो जा रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में सचिवारी समिति सागे मीटिंग में आ जानकारी दीनी। वे नैरी नैरी योजना में हरियाणा राजस्थान अभियान और शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का काम रो जायजो लीनो और जरूरी हुकम दीना। मीटिंग में वन विभाग रा अहलकार बतायो के जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़ और कोटा जिला पौधा रोपण रा काम में अगाड़ी है। मुख्य सचिव बतायो के शहरी सेवा शिविर में हाल ताई 28,000 बत्ता पट्टा दे दिया चिया है, जबकि ग्रामीण सेवा शिविर के जरिए 38,00,000 बत्ता लोगों ने फायदो दियो चियो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो रा असर री शंका न ध्यान रखता थका आज नई दिल्ली में आला दर्जा रा अहलकार सागे मीटिंग कीनी। वह कहो कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी और साफ रणनीति सागे अलनीनो री चुनौतियां रो सामो करण सारू सक्रिय और सावचेत है। कृषि मंत्री कहो कि देश में जेठ महीना में भी कम बिरखा पाछे आषाढ़ में हालात सुधरिया है। देश में अब कम बिरखा वाला जिला की तादाद 262 घटकर 178 रह गई है। मीटिंग पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका केंद्रीय कृषि मंत्री कहो के अल नीनो री शंका न ध्यान रखता थका पूरी निगरानी रखी जा रही है। इ बीच चौमासा री बिरखा मोड़ी सरू वेवण रे कारण सोयाबीन और कपास री साफ माथे असर पड़ियो है। किसानों ने मक्का, बाजरा, मूंग और बेगी पाकन वाली और कम पानी री जरूरत वाली शाखा री बुआई री राय दी जी है। कृषि मंत्री बतायो कि जून महीना में चलाई गया खेत बचाओ अभियान रा तहत करीब 1,25,000 कार्यक्रम रखी गया और 80,00,000 बत्ता किसानों ताई पहुंच बनाई गई। वे बतायो कि बीज री उपलब्धता तय करण सारू करीब 2.25 लाख क्विंटल रो राष्ट्रीय बीज भंडार बनाई चियो है।
5: हमने 2-3 तैयारियों और की, एक तो बीज की कोई कमी ना रहे और इसलिए हमने लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरा पाछे आज ऑस्ट्रेलिया सारू रवाना हो गया। प्रधानमंत्री मोदी रो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ सागे मुलाकात रो कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों बीच कारोबार, निवेश, रक्षा, बनाई लिखाई और साफ ऊर्जा समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। विदेश मंत्रालय रा प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बतायो कि श्री मोदी रा इंडोनेशिया दौरा हुई दोनों देशों बीच सहयोग रा खास नतीजा सामने आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए 13 साल री टावरी सागे यौन दुराचार और मानव तस्करी रा मामला माए श्री गंगानगर रा जिला मजिस्ट्रेट और SP ने 15 दिन माए विगतवार कार्रवाई रपट पेश करन रा हुकम दीना है। आयोग विशेष जांच दल SIT री ओर करीची जांच रोई संज्ञान लीनो है जिन्हें तेत हाल तई 18 आरोपित ने गिरफ्तार करीचिया है। बाकी आरोपिता री बेगी गिरफ्तारी रा हुकम ही दिया चिया है। इस आगे सगला डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मामला माए पीड़िताओं जुड़िया वीडियो और सामग्री तुरंत हटावन सारू कही चियो है। देश माए हाल तई 23 करोड़ 32 लोग नशा मुक्त भारत अभियान जुड़ गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मुजिब आम आए 7 करोड़ 81 लाख 32 नौजवान करीब 5.25 करोड़ महिलावां और 17 लाख 32 स्कूल कॉलेज शामिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कहो कि ई अभियान रा तहत नारकोटिक्स ब्यूरो राज्य और जिला प्रशासन पुलिस गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलर देश माए नशारी लत न जड़ों खत्म करण सारू लगातार कोशिश कर रहा है। TB मुक्त भारत अभियान रा तहत प्रदेश माए स्वास्थ्य विभाग री ओर जांच और जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। सलुम्बर जिला माए जय समंद हल्का रा देवपुरा माए आज लगाई गया ग्रामीण सेवा शिविर माए लोगों री पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन नो स्वास्थ्य जांच करी जी और TB री शंका वाला लोगों ने इलाज री राय दीरी जी। अरब मौसम मौसम विभाग आज जैसलमेर और बाड़मेर अलावा आखा राज्य माए बिरखा विवरण सारू चेतायो है। 12 झालावाड़ और कोटा माए तेज बरसात रो ऑरेंज जबकि 33 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। काल सवाई माधोपुर कोटा और 12 जिला माए चोखे बिरखा रा आसार है। 10 जुलाई पाछे बिरखा माए थोड़ी कमी री संभावना है। इन बीच आज अलवर कोटा और 12 माए में बरसियो। भीलवाड़ा माए दोपहर पाछे बादलों री गाज सागे थोड़ी देर ताई तेज बारिश हुई। धौलपुर माए सवारे हुई छांटो छिड़को भियो। दूजी कानी जैसलमेर माए उमस और जोरदार गर्मी रही। जयपुर माए विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार री ओर 16 जुलाई ने विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस राखी जावेला। जनता ने सुरक्षित और वैध प्रवासन रा प्रति जागरूक करण और फर्जी एजेंटा और गैर कानूनी प्रवासन बचाव रा उपायों की जानकारी देवन सारू आ कॉन्फ्रेंस राखी जा रही है। इनो दूजा देशा माए काम कर रहा भारत रा लोगा और मजूरा रो भलो तय करण माए मदद मिलेला। कॉन्फ्रेंस माए राज्य सरकार री प्रवासी राजस्थानिया जुड़ी न्यारी न्यारी पहला कौशल विकास और सैर सपाटा ने बधाओ देवन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चावेला। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे री गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा कामा रो जायजो लेवन सारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर कीनो। राज्य सरकार ई चौमासा माए 10 करोड़ पौधा रोपणो तय कीनो। पौधा देवन और रोपण रो काम मिशन मोड मत है। अल नीनोरी चुनौती रो सामो करण सारू केंद्र सरकार सावचेत। बीजा री उपलब्धता तय करण बाबत 2.25 लाख क्विंटल रो बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए नाबालिग टावरी सागे यौन दुराचार रा मामला माए संज्ञान लीनो। 15 दिन माए रपट मांगी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

I'm not going to be able to do that.

अलग अंडे ठंडे जो लोग भी सुनो और देखो पहले तो यह है कि भाई आज के समय में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। तो पाओ कि एक पेड़ देखो पकोए माँ के नाम अपन को पेड़ लगाओ नहीं वो अपन देखभाल बड़ी ढंग से करनी चाहिए अपन देखो वो पेड़ लगाएगा नहीं क्योंकि पेड़ और अपन जीवन में काफ़ी योगदान है हर चीज़ है और जो चारों और जो आवरण है नहीं शुद्ध रखने में सबसे देखो बड़ो हाथ है अपना पेड़ हर चीज़ है। देखो पानी है आज बरसात हो रही है तो बरसात में काफ़ी पानी की मतलब खराब हो जावे नालियों में पहुँच जावे तो ये ना पानी ना एक टॉक में भिड़ो कर लो तो खेत है तो खेत में किए गए पानी ना डिग्गी में भिड़ो कर लो जो डागले माथे से पाइप काट दो पूरे डागले पानी है जो टॉक में ले लो मीठो तालर पानी फिर पूरे आलिशान बरसात पानी तो ये बरसात पानी में कई पन फायदा है शुद्ध पानी है पानी जो खराब हो आज रेगिस्तान बैठा पानी जो पूरी पूरी जानकारी मिलती है पानी बहुत उपयोगी है।

तो हो सके तो पानी को कम दूर पे करना। अब आज भी देखो शहरों में काफी लोग पानी ना किए अगर कभी किसी एकदम पानी एकदम न आएगा तो काफी लोग टंकी ओवरफ्लो होने बाद पानी ढूंढ रहे थे, बड़ा दुख हुए थे देखते हुए। आप कुछ समझदार हो गए पानी तो दुरुपयोग कर रहे हो। तो पानी बिजली ये आने समय में बहुत बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन अपना संजो के रखने मतलब हो सके जी बचत। आज बरसात मौसम चल रही हो तो अपना कोशिश ये करनी चाहिए कि बरसात पानी में एकत्रित करो, साफ पानी हो छत से जुगा टोकन में। और साथ साथ देखो भाई लोग हमें किए गृह वाटिका देखो है नी, मैं किए कि किचन गार्डन देखने के लिए देखो ताज़ा और देखो पौष्टिक सब्जी देखो बाजार में मड़ी ना खर्चो हुई अपन मनो संतुष्टि को नहीं की था यार है जैविक खाद रही है रासायनिक खाद है कुत्तो बीमारी है। लेकिन वो आप देखो घर में अगर सब्जियाँ लगाऊँ तो अपन बचत भी हुई मानसिक शांति भी मिली और देखो शारीरिक काम हुए थोड़ा बहुत वो भी अपना होते रहे। ताज़ा सब्जी अपन मिलता हुई बिना रसायन कीटनाशक घर में उगाड़ी विटामिन खनिज भरपूर हुए संतुलित आहार हो जाए हरे पत्तेदार सब्जियाँ ला सके। और बीजी जो बाजार में पौनो जो हानिकारक जो केमिकल है जो जहरीले तत्व है पौधे वास्ते काफ़ी नुकसानदेह वो भी को है कि घर में पौधे गृह वाटिका लगा दिए छत मत लगाओ ये घर बाहर को जगह जगह में लगा दो पैसों की बचत। बाजार से महंगी सब्जी लाऊं हरी फल है तो मासिक बजट अपना सुधरता भाई। जो वेस्ट मैनेजमेंट है जो बेकार कचरू है उन सही उपयोग कर खाद बीज तैयार कर उनमें पर लगा दो और अपने हल्की एक्सरसाइज भी थोड़ा देखभाल कर सो सिंचाई कर सो तो उससे अपना शरीर भी सक्रिय रह से मानसिक संतुलन बने हरियाली एकदम कूदे हुए नहीं जिम हो रहा है बजावे तो कई फायदा है। देखो पैसे भी फायदा है ये वो साथ है कि अपने देखो घर में अगर जब अपन छोटी मोटी सब्जियां उगाएं तो अपन मानसिक भी काफी संतुष्ट मिला करें। और चर्चा आगे जारी अक्सर पहले सुनो प्यारे से लोग।

गुजरी तेरे को लटने छत की बिजली कथ गोर नहीं कहो जाज नहीं तेरे नैनो भई गजली प्रेम गुलेला फेंक दिया तेरी फूट गई शिरकी गधरी जाय पुकारो राजा नंद के आगल।

पहले को बड़े देर लोग की सुनो यहाँ के बतौर घनी खानी लेकिन अपने कार्यक्रम में बखत बोलो तो बारिश के मौसम खुद भी स्वस्थ रहो मस्त रहो आप रहो आप पशुधन हो बड़ा बड़ ख्याल रखो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम राही हम अपनी राहों की। आज आप सुनेंगे विषय विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में, जिसके प्रतिभागी है श्यामवीर सिंह, नेहा व्यास, संध्या व्यास और प्रार्थना बिस्सा। निर्देशन किया है रामजीलाल मीणा ने। तो लीजिए सुनिए ये कार्यक्रम।

0: ओहो, परेशान करके रख दिया है भाई। ऐसे कैसे चलेगा जब ग्रोथ ही नहीं है, तो मैं कहां से दूं, मैं लाऊं कहां से फंड भाई? घर बेच दूं, घर बार सब कुछ सड़क पे आ जाऊं, कहां से लाऊं? हाँ भाई, कम है। हाँ,
1: अरे वैशाली,
0: कविता।
1: वैशाली,
0: हाँ, कविता। अरे यार, ये आओ बैठो,
1: अरे अरे,
0: बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके ओके,
1: आराम से भाई, थोड़ा पानी वानी पी लो। आज क्या ये गर्मा गर्मी चल रही है।
0: अरे क्या पानी, यहाँ तो सांस भी मुश्किल से ली जा रही है यार। कविता, सच बता रही हूँ।
1: अच्छा, ऐसा क्या हो गया, बताओ तो।
0: अरे ये सब कुछ शुरू किया तो कुछ नहीं सोचा कि कैसे होगा क्या होगा, तब तो एकदम सब कुछ एकदम खुला खुला दिख रहा था, और अब ऐसे बंधन दिख रहे हैं कि
1: अच्छा, क्यों, क्या बिजनेस में कोई तकलीफ आ गई है?
0: बिजनेस में तो पूछो ही मत, सारी तकलीफें इस बिजनेस की हैं। कहाँ से फंड लाएं, कहाँ से प्रॉफिट निकालें, और कहाँ से सबको पे करें।
1: नहीं, सही कह रही हो, हाल तो अपना भी कुछ ऐसा ही है, पर अब
0: देश इतनी ग्रोथ कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि एक एक आदमी की ग्रोथ हो रही है या नहीं।
1: अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है वैशाली। देखो, ग्रोथ तो हो रही है, ये अप्स एंड डाउन्स तो देखो लाइफ में आते रहते हैं। और मैं तो आजकल सुन रही हूँ, इसके लिए भी तो सरकार साथ में ही है और पूरा सपोर्ट कर रही है और बढ़ावा भी दे रही है, जो अपना जो काम धंधा शुरू कर रहे हैं उन लोगों को।
0: यार कविता, ये सब पैम्पलेट्स और पेपर, इन सब पे होके रुक जाते हैं।
1: अरे नहीं, बहुत गलत कह रही हो। देखो, परेशान तो मैं भी हूँ, मुझे भी अपना कोई रोजगार शुरू करना है, आय के साधन। अरे इसी को तो कहते हैं पॉजिटिव रहना, थोड़ी सी पॉजिटिव रहो। जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी अपना काम धंधा नया शुरू करना है, लेकिन अभी अभी मैं कहीं से आ रही हूँ, तो मैं सब जानकारी लेकर आ रही हूँ कि भाई प्रधानमंत्री जी की जो वो विकसित भारत रोजगार योजना है ना, उसके तहत वो,
0: देखा मैंने।
1: अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, उसके तहत वो कितने लाभ दे रहे हैं, कितने जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और कितनी सहायता जो लोग अपने बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो कुछ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो खूब मदद सरकार कर रही है। ऐसे परेशान ना हो।
0: तुम जैसे नए लोगों के लिए होते हैं, कंपनियां धीरे धीरे धीरे धीरे डूब रही है ना।
1: सुनो सुनो सुनो, वैशाली वैशाली, आराम से भाई, लगता है कि अब तुम्हारा ब्रेन वॉश करने का वक्त आ ही गया है। चलो, तुम्हें मैं शंकर भैया के पास ले चलती हूँ, चलो। अरे चलो तो सही, ये सारी बातें भूल जाओगी। देखो, शंकर भैया है ना, उनको ये जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी बहुत जानकारी है, और कैसे लाभ उठाए जा सकते हैं इससे, कैसे उसका योजना के लिए पंजीकरण कैसे कराया जाए, और कहाँ कैसे अप्लाई किया जाए, तो वो सारा उनको नॉलेज है। चलो चलो, मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें।
0: हो सके तो एक जूस पिला देना।
1: अरे बिल्कुल, और मैं खुद इनफैक्ट सोच ही रही थी कि शंकर भैया से मिलूं, क्योंकि मुझे भी अपना रोजगार शुरू करना है।
0: यार सुनो यार,
1: हाँ, अब क्या हुआ?
0: फ्रेंडशिप लड़की बैठी है, उसको भी साथ में रहेंगे।
1: अच्छा ऐसा है, अरे
0: तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए।
1: अच्छा ऐसी बात है, चलो
0: चलो,
1: चलो क्या मोनिका, अच्छा चलो चलो चलते हैं।
0: अरे मोनिका,
1: नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते मोनिका।
0: चलो, ये जो मैडम आई है ना, तो ये हमको सही दिशा दिखाए।
1: तो मैम, मैं तो आपकी ऑफिस के लिए आई थी।
0: हाँ, मैं भी इनके साथ हूँ।
1: अच्छा
0: चलो चलो, चलो,
1: चलो आज हम मोनिका हम चल रहे हैं, शंकर भैया हैं, तो वो हमें पूरी जानकारी दे देंगे कि जो सरकार की ये जो योजना है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसके बारे में, और कैसे हमें मदद मिल सकती है किसी भी कौशल का विकास करने के लिए, कोई प्रशिक्षण लेने के लिए, अपना रोजगार शुरू करने के लिए, तो इस बारे में हम जानकारी लेने चल रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ ही हो लो। हाँ हाँ चलो।
0: एक बात तो कहने ही रह गए, सारे कचरे में
1: अब क्या हुआ,
0: एकदम ग्लो कर।
1: भाई योगा जो करती हूँ,
0: भाई
1: हम तो फिट इंडिया को फॉलो करते हैं।
0: चीयर अप।
1: चलो चलो चलो, शंकर भैया।
2: कविता।
1: कैसे हो शंकर भैया?
2: बहुत अच्छा हूँ, और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है।
1: अरे बहुत दिन से सोच रही थी आने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भाभी मायके से आ गई या नहीं, उनके हाथ की चाय जरूर पियेंगे आज हम।
2: हाँ देखो, भाभी जी चाय बनाए ना बनाए, लेकिन मैं आपको चाय जरूर पिलाऊंगा।
1: अरे अरे भैया, आपके हाथ की भी पी लेंगे, मगर अदरक वाली।
2: और कारण ये
0: है
2: वैशाली, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है?
0: अरे चल, क्या रेंग रहा है अब तो, क्या बताऊं बस, क्या।
1: अरे बात यूं है शंकर भैया, आज

0: मैं जब वैशाली के पास गई तो ये बड़ी परेशान लग रही थी और बड़ा ही डिसअपॉइंट हो रही थी, तो मैंने इसे कहा कि क्यों ना चलकर आज हम आपसे जानकारी, और ये इससे मिली है मोनिका। देखिए भैया,
1: मोनिका बेटा कैसे हो?
0: बढ़िया सर।
1: हाँ देखो, आपके जैसे बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री है और उनके उनको एक उम्मीद रहती है कि कोई इंडस्ट्री लगेगी, उनको रोजगार मिलेगा, और मुझे लगता है कि मोनिका भी इसी उम्मीद में आई होगी।
0: सर मैं तो वैशाली मैम के इधर आई थी, सोचा कोई जॉब दे देंगे, लेकिन भैया बिना आप भाप ही जाते हैं कि हम आपके पास क्यों आए हैं।
1: अरे देखिए, अभी भारत का जो विकास हो रहा है ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विकास की दौड़ में आप ही शामिल होना चाहते हो, बस इतना।
0: बस भैया वही है,
2: मुझे तो लगता है कि जितना कहा जा रहा है कि भारत की ग्रोथ हो रही है, विकसित भारत बन रहा है, पर एक एक व्यक्ति का विकास हो पा रहा है?
0: फिर चली गई ना। अरे अरे वैशाली भैया, जरा इसे बताइए, आज ये बड़े अलग ही मूड में है।
1: देखो ऐसा है कि हमारा भारत बहुत तेजी से अपने विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा समय नहीं है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहचाना जाए। अब विकसित भारत यानी कोई भी देश विकसित होता है उसका मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं।
0: जी भैया।
1: देखिए जो संसाधन हमारे देश के अंदर है और हम उन सबका उपयोग करना शुरू कर देंगे ना, तो समझो हम विकसित हो गए। अभी जैसे हमारे बहुत सारी भूमि ऐसी पड़ी है जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब मोनिका जैसे बच्चे अगर यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार नहीं है, तो भारत विकसित भारत नहीं कहलाएगा। लक्ष्य यह है कि हमारे संसाधन है उसमें युवा पीढ़ी है, इनको रोजगार, जमीन और जितने संसाधनों का उपयोग हम अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े तो विकसित भारत बनेगा। अब भारत सरकार इस विकसित भारत जो हमारा होने वाला है 2047 तक, इसमें कोई पीछे ना रह जाए, लक्ष्य यही है। देखिए किसानों के लिए जो सुविधाएं भारत सरकार वर्षों से दे रही है
0: जी।
1: और देखिए इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान गया है हमारे देश में। देखिए अब जो इंडस्ट्री लगती है ना, अब जरूरी तो नहीं कि सारी इंडस्ट्री प्रॉफिट में चले या बहुत ज्यादा कमाई करके बहुत सारे लोगों को रोजगार दे।
0: बिल्कुल सही भैया।
1: इंडस्ट्री होती है जो कि उनको प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सरकार चाहती है कि उनको मदद करें और उनको भी प्रॉफिट में लेके आए और वो भी इस देश के जो विकास में भागीदारी करें।
0: अरे बता तो रहे भैया, सुनो तो।
1: हाँ अब देखो जैसे कि आपने बात कही कि आपकी एक इंडस्ट्री है और आपकी प्रॉब्लम्स जब आप बताओगे ना, तो भारत सरकार की इतनी सारी योजना है तो मैं आपको कोई ना कोई हल जरूर बताऊंगा।
2: अच्छा इतना आसान है क्या?
1: अरे अब तो इतना आसान हो गया है सब कुछ, क्योंकि देखिए अभी जो जैसे हमने बात की कि अभी डिजिटल भारत हो चुका है और अब हमें कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल हाथ में है और आपकी जरूरत की सारी स्कीम्स आपके मोबाइल के अंदर मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। तो अब हम बात करें तो जो हमारा विकसित भारत है, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मोनिका बिटिया की तो प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि रोजगार मिलेगा 100% मिलेगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी यो कहा है कि यहाँ पर अब रोजगारों का एकदम से इतना जल्दी से इतनी तेजी से रोजगार बढ़ेंगे कि मुझे लगता है कि वर्कर्स कम पड़ जाएंगे।
0: अच्छा शंकर भैया, जैसे मोनिका आज मेरे साथ पहली बार आई है, वैशाली अपने काम को लेकर परेशान है, तो जो सरकार की योजना है भारत की है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ शंकर भैया विस्तार से आप इसके बारे में मोनिका और वैशाली को भी जानकारी दें।
1: बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम वैशाली की बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री है और इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
0: जी जी
1: तो हम इसे जानेंगे, लेकिन ये योजना शायद आप जैसे इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों के लिए है, विकसित भारत, यह है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।
2: अब देखिए भाई साहब, नहीं तो कहाँ रोजगार, ये देखिए मोनिका जैसे कई मेरे पास आते हैं लेकिन मैं चाह कर भी उनको जॉब नहीं दे सकती, कैसे दूं, ना तो उतनी ग्रोथ है और ना मेरे पास उतना पेमेंट कि मैं इनको भी पे कर सकूं, मेरी कोई भी जो भी मेरा इनपुट है उतना है ही नहीं मेरे पास, आउटपुट कहाँ से निकालूं भाई साहब, कोई ऐसी रोजगार योजना या इनकम चिराग।
0: अरे भाई तुम भी ना वैशाली, सच में आज तो जाने तुम्हें क्या ही हो गया, सुन तो लो।
2: नहीं हो, साल भर से यही चल रहा है और मैं सोचती हूँ यार ये मार्च में चला गया, क्या रिजोल्यूशन?
0: बस समझो कि आज तुम्हारी तकलीफों का अंत हुआ। मैम क्या पता शंकर सर जो बता रहे हैं उसमें आपको इतनी सुविधा मिल जाए कि मुझे भी आप जॉब में लगा लो।
1: देखिए जो भी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या जो लगा चुके हैं तो उनके लिए ये जो यूं कहें कि विकसित भारत रोजगार योजना एक वरदान साबित होने वाली है। सबसे बड़ी फायदा इसमें ना सिर्फ वर्कर्स को है और इसमें जो इंडस्ट्री चला रहे मालिक दोनों को ही है। यानी ये स्कीम एक उस ऐसे पुल की तरह है जहां पर वर्कर्स और उनका रिलेशन बढ़ने वाला है। हाँ वो देखिए जैसे एक नदी होती है, अब उस तरफ है और मैं इस तरफ हूँ, बिना पुल के हम नहीं जा सकते। तो सरकार क्या चाह रही है कि एक ऐसा पुल बनाए वर्कर्स और जो मालिक है उनके बीच में, तो वर्कर्स आराम से
0: एक सेतु लग रहा है सेतु बना रहे हैं
1: और वर्कर्स जो है कि इंडस्ट्री तक पहुंच जाए। तो अब मैं बताऊं देखो स्कीम क्या है, सरकार क्या चाहती है। सरकार ने सरकार चाह रही है कि जो इंडस्ट्री है, अब सबसे बड़ी इंडस्ट्री वालों को प्रॉब्लम क्या होती है कि लेबर महंगी है, वर्कर्स को तनख्वाह ज्यादा जा रही है, इस कारण से उनको लॉस जा रहा है। यानी जो प्रॉफिट आ रहा है वो सारा पेमेंट चला जा रहा है उनकी तनख्वाह देने में, तो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब देखो इसमें क्या होगा कि वर्कर्स जो आप रखोगे तो शुरुआत में अगर प्रॉफिट कम है आपका तो उतनी पैसा नहीं दे पाओगे, तो एक साल तक सरकार आपकी हेल्प करने वाली है दो तरह से।
2: अच्छा।
1: जो वर्कर्स आप रखोगे ना उनकी हेल्प भी करेगी, अगर उनका आपकी कंपनी ईपीएफ अकाउंट खुलवाती है पहली बार, यानी नया वर्कर्स आपके यहाँ पे आएगा तो एक साल के अंदर सरकार 15,000 रुपए उस वर्कर्स को देगी।
2: अच्छा।
1: हाँ, और इसमें शर्त यह है कि 6 महीने तक रोजगार करेगा तो 7,500 और 1 साल पूरे होते ही 15,000
0: दो किस्तों में मिलेंगे।
2: भाई साहब इसीलिए छोड़ के चले जाते हैं
1: कम पैसे की वजह से। दूसरा अब आपके लिए क्या फायदा है, जैसे कि मान लो आपको एक वर्कर्स रखते हो ना तो उसका पेमेंट जाता है उसके पीछे मान लो लॉस हो रहा है मतलब 2,000, 3,000, 2,500 का, तो सरकार जितने वर्कर्स रखोगी प्रति वर्कर्स के हिसाब से आपको 3,000 रुपए पे करेगी।
0: अरे वाह,
2: उनकी तरफ से अलग से
1: बिल्कुल वो आपको मिलेगा, वर्कर्स को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा।
2: प्रैक्टिकल है ना
1: बिल्कुल। और ये सरकार की स्कीम है, सरकार का लक्ष्य, और इसके लिए सरकार ने बजट जो निर्धारित किया है वो है 1,00,000 करोड़ का, बड़ा बजट है। और इसके अंतर्गत सरकार ने जो कैलकुलेशन किया है कि हम इतने अगर रुपए को इंडस्ट्री को देंगे और वर्कर्स को देंगे तो लगभग 3,60,00,000 रोजगार सृजित होंगे।
0: तो तुम मेरा रोज भाई ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा शंकर भैया एक बात और बताइए कि ये तो चलो हमें पता चल गया कि सरकार की योजना है और इस तरह से हम लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवेदन कैसे करें या उसमें पंजीकरण कैसे कराया जाए?
1: जो भी कंपनी होती है ना और उसके यहाँ जो वर्कर्स आते हैं तो जैसे ही पेमेंट जाएगी तो उसमें उसका ईपीएफ अकाउंट खुलाना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: ईपीएफ अकाउंट के माध्यम से सरकार को पता चलता है कि एक वर्कर
0: इस कंपनी में काम कर रहा है।
1: हाँ, बिल्कुल। तो ये जो पेमेंट आएगा ना ईपीएफ अकाउंट क्या होता है आपको पता है कि जो कुछ तो जो वर्कर्स का जो है ना पेमेंट उसमें जाता है और उतना ही योगदान सरकार
0: उतना सरकार देती है।
1: तो ईपीएफ अकाउंट के माध्यम से सरकार को पता चलेगा इस कंपनी में एक नया वर्कर्स आया है तो उसको हमको 7,500 रुपए 6 महीने में देने और नेक्स्ट जो 6 महीने होंगे उसमें 7,500 देने। तो ईपीएफ अकाउंट नंबर वगैरह आप डाल के अपनी ज्वाइनिंग डेट वगैरह सारा करके और ईपीएफ अकाउंट के माध्यम से ही उन कंपनियों को पेमेंट आएगा।
0: अच्छा अच्छा,
2: स्टेबिलिटी भी हो गई।
1: अब देखो
0: सही
2: मिलेगा ही मिलेगा।
1: अब इसमें देखिए कई बार ये सोचते हैं इंडस्ट्री वाले कि ये शायद छोटे वर्कर्स के लिए होगी जिनको कम पैसा दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए छोटे वर्कर्स से लेकर जिनका पेमेंट 1,00,000 रुपए पर मंथ है उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, मान लो कोई कंपनी 1,00,000 रुपए पेमेंट कर रही है तो उस कंपनी को भी 3,000 पर पर्सन के हिसाब से मिलेगा और उस 15,000 का बेनिफिट उस वर्कर्स को भी मिलेगा। अब इसमें आप सोच रहे हो कि कितने दिनों तक मिलेगा, तो देखिए मिनिमम 2 साल तो है ही, लेकिन कुछ कंडीशन है और उसके अंदर जैसे विनिर्माण क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको ये 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा 3,000 रुपए पर वर्ष।
2: तो
1: अब वो चार
2: सिक्योरिटी भी हो गई और आपकी ग्रोथ भी 4 साल में तो बहुत अच्छी हो सकती है।
1: बिल्कुल। अब ये 4 साल में आपको सस्ते वर्कर्स मिल जाए तो आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हो। अब देखिए हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, इतना बड़ा मार्केट है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा दुनिया की जो कंपनियां यहाँ आकर के प्रॉफिट निकालती हैं, हम अपने देश में बैठे सरकार इतनी सुविधाएं देने के बावजूद अगर हम अपनी कंपनी को प्रॉफिट में ना ला पाए या

0: इंडस्ट्री दूसरे लोगों को रोजगार ना दे पाए तो हमारा इंडस्ट्री चलाना का कोई मतलब नहीं।
1: भाई मुझे लगता है शंकर भैया इसके लिए तो हमें जागरूक रहने की जरूरत है।
0: जागरूक हमें रहना पड़ेगा। और देखिए जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वालों को जितनी सरकार की स्कीम है उन सबका ज्ञान भी होना जरूरी है।
1: ये बात तो है।
0: देखिए मान लीजिए आप दोनों इंडस्ट्री चला रहे हैं
1: जी।
0: एक जो व्यक्ति इंडस्ट्री चला रहा है वो सरकार का सारा बेनिफिट ले रहा है और आपको जानकारी का अभाव आप नहीं ले पा रहे तो उसको उससे आप फाइट नहीं कर पाओगे। तो दोनों को सरकार से बेनिफिट मिलेगा तभी आप दोनों कंपटीशन में खड़े हो पाओगे। अब बात करते हैं जैसे हमारी बिटिया है ये मोनिका अभी रोजगार की तलाश में कई कंपनियों में। अब शुरुआत में पहले क्या होता था मान लो कोई कॉलेज से निकला या किसी टेक्निकल जॉब के लिए जा रहा है तो इंटर्नशिप के लिए कहीं कंपनी में जाना पड़ता था। कई कंपनियां जो अच्छी हैं वो पैसा दे भी देती थी कई नहीं दे भी थी। अब क्या होगा जैसे बिटिया को नौकरी कहीं भी मिलेगी हाँ तो इंटर्नशिप मान लो या जॉब के तौर पर ही वो रखता है और शुरुआत में ही सरकार का बेनिफिट और उस कंपनी को इस बिटिया की वजह से जो बेनिफिट होगा उसके कारण इसका ईपीएफ अकाउंट खुल जाएगा और इसका मतलब उसकी जॉब शुरू हो चुकी है तो ये बेनिफिट होगा। तो जो बच्चे हमारे कंपनियों में जाते हैं मुझे लग रहा है कि उनको आसानी से जॉब मिल सकेगी। अब हमारे देश में स्किल का जो मैं कहूँ कि स्किल वाले जो स्टूडेंट हैं तो स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से भी ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि मान लो कोई वर्कर्स है और उसको बहुत ज़्यादा स्किल वाला नहीं है तो कंपनी कहेगी भाई देख लो अभी काम सीखना है तुमको 6 महीने हमारे रहना पड़ेगा और पैसे नहीं देंगे। तो अब उसको फायदा हो रहा है अगर इनको पेमेंट करता है ईपीएफ अकाउंट खुलाता है तो 3,000 उस कंपनी को मिलेंगे तो सीखने के दौरान भी पैसा इनको कमा सकते हैं ये बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा शंकर भैया जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पिछले टाइम मैं एक कंपनी में काम कर रही थी लेकिन मुझे लगा कि मेरा जो आय है वो थोड़ी मुझे कम पड़ रही थी घर कर चल नहीं रहा था तो अभी अभी मैंने छोड़ दिया। अब मैं कोई अपना नया रोजगार शुरू करना चाहती हूँ खुद का कुछ करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं कैसे इस योजना से लाभ उठा सकती हूँ।
0: देखिए इस योजना से एक छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पर व्यापार किया जा सकता
1: है। जैसे मैं आपको बताऊँ मेरी कंपनी है वो कपड़े बनाने का काम करती थी और मुझे फैशन डिजाइनिंग में नॉलेज है तो मेरी जो स्किल्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं इस फील्ड में तो मैं उस क्षेत्र में कुछ काम करना चाहती हूँ।
0: अब देखिए इसके लिए आपको सबसे पहला तो आपको के जगह की जरूरत होगी है ना। तो सरकार पूरे देश के अंदर ऐसे 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रही है।
1: अच्छा
0: हाँ तो अगर आपको जैसे के बहुत कम पैसों पर जगह चाहिए तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
1: अच्छा
0: हाँ उन इंडस्ट्रियल पार्क में आपको जगह मिल जाएगी। दूसरा जो जगह मिलेगी इंडस्ट्रियल पार्क में उस जगह के अंदर जो फैक्ट्रियां खुलेंगी उनको वर्किंग कैपिटल बैंकों द्वारा दी जाएगी यानी आपको जो पैसा चाहिएगा ना।
1: अच्छा
0: टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत ध्यान रखा गया है जो भी नई टेक्नोलॉजी का समावेश इंडस्ट्री में करना चाहे सरकार जो भारत में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वो उन कंपनियों को उपलब्ध करा रही है।
1: अच्छा
0: हाँ तो नई टेक्नोलॉजी होगी नया प्रोडक्शन होगा और नई ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे तो क्यों नहीं प्रॉफिट होगा क्यों ना आपको अच्छी और देश का ग्रोथ भी होगा इससे।
1: बिल्कुल शंकर भैया अगर मुझे आगे भी कोई दिक्कत आई इस दिशा में तो मैं आपसे जरूर सलाह लेने आऊंगी। बाकी मुझे निराशा तो देखो बिल्कुल नहीं थी मैंने जॉब छोड़ी और अपना काम शुरू करना था तो जो चारों तरफ मैं देख रही हूँ सुन रही हूँ कई लोगों के मैंने एक्सपीरियंस भी सुने तो इतना तो मुझे भरोसा था कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई मदद तो मुझे ऐसी जरूर मिलेगी जिससे अपने अपना खुद का रोजगार मैं शुरू कर सकूंगी।
0: मोनिका बिटिया देखिए आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप शुरुआत में कहीं आप जैसे अभी आपने जो भी पढ़ाई की है और जो जॉब करना चाहती हो जिस जॉब के लिए जा रही आप ज्वाइन करो किसी की कंपनी और उसके बाद वहां सीखने के बाद में अगर आपको लगे कि इस काम को मैं अपने निजी रोजगार के रूप में परिवर्तित करना चाहती हूँ तो सरकार उसके लिए बड़ा प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि आपको अनुभव हो जाएगा अगर किसी कंपनी में 2 या 3 साल काम करने का तो सरकार ये जो रोजगार सृजन का कार्यक्रम चला रही है इसके माध्यम से आप भी अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं।
1: वही तो हुआ है मेरे साथ। तो शंकर भैया मैं इतनी देर से सोच रही हूँ तो अब मुझे ये जगह जगह कंपनी में जाना और वहां पर अपने रिज्यूम देना, ये जरूरी नहीं है मैं घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा कर अपनी जॉब पा सकती हूँ?
0: देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सरकार के भी हैं और प्राइवेट्स भी हैं, तो आपको मुझे लगता है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपनी में आपको घर बैठे आजकल लेटर आ जाते हैं।

0: और मुझे लग रहा है ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस
1: तो
0: अपना रिज्यूम डालो और अपने कंपनियां खुद ढूंढ रही है अपने वर्कर्स को। तो जो मैं कह रहा हूं कि इस योजना के माध्यम से जो 3,60,00,000 के रोजगार सृजन होंगे तो कंपनियां आपको खुद ढूंढ लेंगी हमको किस तरह के जो है वर्कर चाहिए। बस शर्त यही है ईमानदारी से अपना रिज्यूम और स्किल आपको उसमें भरना है, जिससे कि आपको इंटरव्यू में उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे जो आपका स्किल है। अब कई बार क्या होता है कि अपना जो रिज्यूम बहुत हैवी बना दिया है ना, और फिर उस स्तर पे जो कंपनियां आपको खोजेंगे अगर इंटरव्यू में आप जाओगे तो उसी स्तर के सवाल भी पूछे जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तो ये गलती ना करें, आपका जितना स्तर है उसी स्तर के आप रिज्यूम बना करके डालेंगे तो कंपनियां इंटरव्यू में आपको जल्दी से
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो जो हमारा कौशल है जितनी हमें एबिलिटी हम में है तो उसी के तौर पर हम अपना रिज्यूम तैयार करें।
2: हाँ, ये तो सही बात है।
3: जैसे आपने कहा कि भाई गवर्नमेंट से ही मिल जाएगी हेल्प, हमने ले ली है, मान लीजिए मैंने ले ली है, अप्लाई कर दिया, हो गया, आप जैसे बता रहे हैं आसानी से हो जाएगा।
0: बिल्कुल
3: यही है, कर लिया मैंने, ले लिया, अब ये बताइए क्या मेरी कंपनी में फिर कुछ गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बन जाती है?
0: गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं, लेकिन देश के विकास में आपकी हिस्सेदारी जरूर बन जाएगी। आप
1: की बिजनेसमैन बन गई हो तुम तो।
0: देखिए सरकार का
3: जरूरी
0: है। हाँ, सरकार का आपकी कंपनी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप किस तरह से काम करो आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जो आपके यहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे, जो उनको आप रोजगार दोगे, जो प्रोडक्शन आप अपने देश में या एक्सपोर्ट करेंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कार्य करेंगे, सरकार के लिए ये बड़ी हेल्प होगी। तो देखिए हाँ,
3: अब साथ बढ़ना हो गया, कहते ना वो मोदी जी की कौन सी है वो एक टैगलाइन है ना, सबका साथ सबका विकास।
0: अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस योजना के और भी बेनिफिट हम जान लेते हैं। देखिए, एक तो हो गई रोजगार सृजन की बात हो गई कि किस तरह से जो कंपनी और वर्कर्स के रूप में ये योजना सेतु का काम करेगी। अब इससे सरकार को बेनिफिट क्या होने वाले, हमारे देश को बेनिफिट क्या होंगे? देखिए, अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमको बाहर से मंगाने पड़ते हैं। अब चाहे हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी भारत बहुत सारे बाहर से आ रहे हैं, और देखिए कपड़े का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है भारत, है ना, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे ब्रांडेड कपड़े भारत में आ रहे हैं। और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में आ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जो बाहर से मंगा रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए हम कार्य करें। और जब सब लोग पूरा देश जुट जाएगा एक बार काम करने के लिए, तो किसी ना किसी का तो ऐसा ब्रांड निकलेगा ही जो कि बाहर से जो ब्रांड आ रहा है उसको टक्कर दे सके और उसको छोड़ करके हमारे देश के लोग उसको अपना सके। और कैसे अपनाएंगे, क्वालिटी और उसका जो प्राइस होगा कम होगा। हाँ, तो अभी देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो हर यूं कहें कि हम अपने जेब के अंदर ही देखेंगे, अपने पर्स के अंदर ही देखेंगे ना, तो बहुत सारा मतलब क्या ये विदेशी आपको मिल जाएगा,
1: चाहे घड़ी
0: हो चाहे मोबाइल हो या जैसे
1: कॉस्मेटिक भी होता है।
0: तो ये सब चीजें जब हमारे देश में बनने लगेंगी तो हमारा बहुत सारा रेवेन्यू जो कि विदेश में चला जाता है उसकी बचत होगी। जो देश का पैसा देश में ही रहेगा ना, तो देश बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अभी हमारे लिए इंडिया के लिए सबसे बड़ा यूं कहें कि एक जो पैसा बाहर जा रहा है वो जाता है पेट्रोलियम में, लेकिन आपको आश्चर्य हुआ कि पेट्रोल अभी प्राइमरी नहीं रहा, पेट्रोल से ज़्यादा भी हम कई चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि अभी कुछ दिनों के लिए सोना ना खरीद, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये लगभग उसके लेवल के पहुंच चुके हैं, यानी 5.5 लाख करोड़ का हम गोल्ड इम्पोर्ट कर रहे हैं और जो है 8.5 लाख करोड़ का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और पेट्रोलियम भी बहुत सारा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो एक गोल्ड 5.5 लाख करोड़ का ही हम हर साल इम्पोर्ट कर लेंगे, तो और पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो देखिए गोल्ड हमारे देश में नहीं है तो उस पर तो हमारा जो जरूरत है तो वो करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को हम बना सकते हैं, है ना। दूसरा पेट्रोलियम के विकल्प हम खोज सकते हैं। अभी आप देखो बहुत सारे लोग आपको हाँ अभी आप जैसे कि ई बाइक शुरू हुई है आप चला भी रहे हैं और ये गाड़ियां और ट्रेन वगैरह, तो हमारा 100% ट्रेनें भी अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है तो वो चल रही है।

0: इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है, है ना, लेकिन पेट्रोलियम को बाहर से मंगाना पड़ रहा है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का क्यों ना उपयोग करें। तो धीरे धीरे सरकार चाह रही जितना भी हमारे यहाँ पर जो ट्रैफिक है, चाहे तो छोटी गाड़ियों से लेके बड़ी बसों तक, तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है भारत के अंदर। अभी आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, अभी वो ट्रेन लॉन्च हुई, उसके बाद बस भी लॉन्च हो गई।
1: तो
0: और हाँ, अब इससे क्या फायदा होता है, देखिए हाइड्रोजन वाली जो बस है, ट्रेन है, इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, जो वो सिर्फ एक धुआं की जगह बहुत ही शुद्ध पानी निकलता है। तो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी अब आई है, धीरे धीरे शुरू होगी, तो भारत जो अपने विकास के पथ पर जा रहा है और जो हमारे लोग हैं जो के यहाँ पर अपने देश में रह रहे हैं, वो भी इस विकास के दौड़ में बराबरी पर चल सकें, कोई पिछड़ ना जाए। जैसे आपने कहा, कह ही दिया कि सबका साथ सबका विकास, कोई पीछे ना रह जाए। आपके आसपास कहीं ऐसा लगे आपको कि हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, ये बेरोजगार घूम रहा है, इसका कुछ स्किल डेवलपमेंट करके अपने यहाँ पर काम दे सकते हैं, या सरकार की कोई योजना उसको बता करके वहाँ भेजा जा सकता है। ये सब जो विकसित भारत रोजगार जो सृजन का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, ये सब उसी का फायदा देने वाला है।
1: बिल्कुल सही है शंकर भैया। और मुझे भी आप लोग इधर होगा, जब घर की कमाई घर में रहेगी, और ये सब हमारा परिवार है, जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य थोड़ा कमजोर हो तो हम उसे सहायता देते हैं, तो ऐसे ही सारे देशवासी हमारा परिवार ही तो है, तो सबको साथ लेकर चला जाए।
0: और अंत में एक बात और कहूंगा कि देखिए कई बार क्या होता है कि सेम इंडस्ट्री दो लोग चला रहे होते हैं, तो उनसे यूं कहें कि संपर्क करके और दोनों को टेक्नोलॉजी अलग अलग होगी तो साझा करके दोनों आगे बढ़े, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपटीशन करने के बजाय हम उनसे मिलकर के काम करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो देश जल्दी विकास करेगा। हमारे देश में ये माहौल बनाना पड़ेगा कि अगर सेम काम भी कर रहे हैं तो उसको साथ लेकर उसका सहयोग करके आगे बढ़े, तभी देश आगे बढ़ पाएगा।
1: भाई एक अकेला मेहनत करे और साथ मिलकर मेहनत करें, एक माइंड हो और 100 माइंड इकट्ठे होकर शक्ति बन जाएं, तो उसकी तो फिर बात ही क्या है।
2: कविता ऐसे करते हैं ना यार, मेरा तो चल ही रहा है, साथ में कुछ ना कुछ आ जाओ।
1: अरे वाह, क्यों नहीं, देखा। अरे वैशाली, मुझे अब एक बात बताओ कि अब तुम शंकर भैया से मिली, इतनी सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया, तो मन को थोड़ी शांति हुई या नहीं?
2: हो गया है, थोड़ी पॉजिटिवनेस भी आ गई,
1: थोड़ी तभी चेहरा खुश लग रहा है।
0: देखो वैशाली, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे पास है और ये नया रोजगार शुरू करना चाहती है, तो इनकी हेल्प तुम करो, और जो सरकारी योजना बेनिफिट जो मिलेगा वो आपकी हेल्प ये कर देंगे। और ये वर्कर्स ये ढूंढ के मोनिका,
1: आज तो बड़ा देखो कमाल ही हो गया मोनिका, हमारे भी काम बन गए और वैशाली की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मुझे भी एक नई जॉब मिल गई। अच्छा शंकर भैया, चलने से पहले एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, मेरे मन में थोड़ी देर से आ रही है कि ये जो सरकार मदद देती है, इसकी कोई समय सीमा है या अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग रोजगार वालों के लिए अलग अलग समय सीमा है या सभी के लिए समान है?
0: हाँ देखिए, हम मैंने पहले भी बताया कि ये इसकी समय सीमा तो है, जैसे कि कोई कंपनी चाहे नई है चाहे पुरानी है, ये अगर उसके अंदर वर्कर्स नया आएगा ये उसके बेस पर मिलेगी आपको।
1: अच्छा।
0: जैसे इनकी कंपनी पुरानी है, आप नहीं खोलोगे तो आप नए वर्कर्स रखोगे तो उन सबको बेनिफिट मिलेगा, इनके आप पहले से वर्कर हैं उनको नहीं मिलेगा, लेकिन नए वर्कर रखेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, इनको भी मिलेगा, उस वर्कर्स को भी मिलेगा। और ये 2 साल तक तो सबके लिए अनिवार्य है,
1: अच्छा।
0: लेकिन कुछ विनिर्माण कंपनियां हैं उनके लिए 3 से 4 साल तक भी एक्सटेंड
1: होता
0: है कार्यक्रम, उनके लिए फायदा मिलता है। तो कुल मिला के हम बात करें तो इस योजना का फायदा उठाएं, और जो भी सरकार चाह रही है और सरकार की जो मंशा है कि सबको रोजगार मिले, मुझे लगता है कि आप सब मिलकर के इस देश को 2047 तक हम विकसित भारत के रूप में जरूर बदल।
1: बिल्कुल बिल्कुल शंकर भैया, लेकिन एक बात आप भूल नहीं रहे हैं, बताइए क्या आपने कहा था, अपने हाथ की चाय पिलाएंगे आप हमें?
0: बिल्कुल। और बैठिए, अब मैं लाता हूँ बना के चाय, और बस और ऐसे ही मिलते रहा करो और आ जाया करो, चाय के बहाने आ जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब भाई आप जल्दी से चाय ले आइए, फिर हम चलते हैं हमारे काम पे। सही बात है,
0: ये देखिए आपकी रेडीमेड चाय।
1: अरे वाह।
0: तो देखिए आप, आज बहुत अच्छा मुझे लगा आप सब लोग आए, और मुझे लग रहा है कि ऐसे जब आएंगे कुछ बातचीत होगी तो हम सबको फायदा जरूर मिलेगा।
2: और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाई साहब, आपने तो मेरी आंखें भी खोली, या यूं कहूं कि दिमाग के जो चक्षु होते हैं ना, बंद पड़े
1: हैं। चलिए
0: सारी क्या खुल गई हैं अब सब।
1: चलिए नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते शंकर भैया।
3: आजादी का अमृत महोत्सव।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राही हम अपनी राहों के, जिसका विषय था विकसित भारत रोजगार योजना, और प्रतिभागी थे श्यामवीर सिंह, नेहा व्यास, संध्या व्यास और प्रार्थना बिस्सा। निर्देशन किया था रामजी लाल मीणा। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 8 बजे हैं, समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम है सरफरोश।

ओए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

अभी आपने रूप कुमार राठौड़ की आवाज में बॉर्डर फिल्म का ये गीत सुना। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में ये अगला गीत, अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में बंटी और बबली फिल्म से ये गीत।

अभी आपने बैनी दयाल की आवाज में गजनी फिल्म का ये गीत सुना। आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में चलते चलते फिल्म का ये अगला गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 8:30 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का, तो आइए आपको सुनवाते हैं गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 8:45 होने वाले हैं और अब से कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ @9, जिसे हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी

0: भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य अंगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिंफनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में

0: श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषि जायसवाल के साथ अक्षित प्रद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्तेस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयन मंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तिक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-final. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
7: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
6: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister in a social media post said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex in a joint press statement at the temple premises. Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
8: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहाँ जरूर आएंगे दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं
6: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait, Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the vision of Mr. Al Sabah for stronger and mutually beneficial India-Kuwait cooperation. Dr. Jaishankar also met Defence Minister Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah and discussed about defence industry cooperation and maritime security. India and Russia today reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs Sibi George and Deputy Foreign Minister of Russia Dmitry Lubinsky co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups, and their proxies and affiliates. Defence Research and Development Organisation DRDO today conducted a successful flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket LRGR at the Integrated Test Range Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometers. The Pinaka LRGR rocket is designed by Armament Research and Development Establishment in association with High Energy Materials Research Laboratory with support from Defence Research and Development Laboratory and Research Centre, Imarat. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated the RDO, the Indian Army and the industry on the successful flight test. The minister described it as a major milestone in indigenous design and development capability for long-range guided rockets. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall-deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact of El Niño. He expressed confidence that rainfall will gain further momentum during July, leading to an acceleration in kharif sowing.
7: The number of districts facing deficient rainfall has declined from 262 to 178 due to good rainfall in several districts of the country during the last few days. We continue to closely monitor these 178 districts. Better rainfall in July has improved sowing prospects, which is expected to pick up further. As of yesterday, sowing has been completed on over 350 lakh hectares. The delayed monsoon has slightly affected the sowing of tur, soybean and cotton. Farmers are being advised to prioritize sowing of short duration crops such as maize, pear millet and green gram.
6: Mr. Chauhan said the center is closely monitoring the situation in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Bihar, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, Punjab, West Bengal and Odisha. The Indian Meteorological Department has said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into remaining parts of North Arabian Sea, Rajasthan, Haryana and Punjab during the next 2 to 3 days. IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, East Rajasthan, Madhya Pradesh, South Himalayan, West Bengal, Sikkim and West Uttar Pradesh tomorrow. A report from our correspondent.
2: The Met Department has predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, East Uttar Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Goa and Madhya Maharashtra over the next 2 days. Similar conditions are likely to prevail over Karnataka, Kerala, Mahe, Konkan, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Friday. Delhi NCR today witnessed a brief spell of rain which brought relief to the people of the national capital after warm and humid conditions. It transformed the city's weather into a pleasant and refreshing experience. With Rushu Jaiswal, Akshit Vedyan, Akashwani News, Delhi.
6: Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satheesan. Meanwhile, Nasik, Raigarh and Palghar districts continue to witness incessant rainfall while heavy showers persist across the Ghat regions of Maharashtra. IMD has issued a red alert for Palghar and Raigarh districts and Ghat areas of Nashik, Pune and Satara. More from our correspondent.
9: Heavy rainfall continued across Nashik and Igatpuri catchment areas, with several locations recording more than 300 mm of rainfall in last 24 hours. Authorities issued advisories for residents along Godavari River following water discharge from filled reservoirs. Raigarh and Ratnagiri district also received heavy rainfall, which resulted in flooding of residential areas. Palghar district has been witnessing very heavy rainfall over the past 8 days, prompting release of dam water into Surya River, leading to flooding of nearby low-lying areas. Devapriya Bhattacharya, Akashwani News, Mumbai.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alert. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp sell-off today, with both the Sensex and the Nifty plunging more than 2%. Spike in crude oil prices, weak global cues and renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. We have a report.
10: The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell over 1.5%, while the Small-Cap 100 Index lost more than 2.2%. Earlier markets opened on a negative note amid geopolitical concerns. Sentiment weakened further during the latter half of the session after U.S. President Donald Trump said that the Memorandum of Understanding signed with Iran to end the conflict was over, adding that he did not want to engage with Tehran. With Ayushi's report, Gaurav Dhawan Lal for Akashwani News.
6: Speaking to reporters at the North Atlantic Treaty Organization NATO summit in Ankara, U.S. President Trump said he does not want to waste his time negotiating with Iran.
11: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're led by sick people. They're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't like these people.
6: Trump's statement comes hours after the U.S. carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. The U.S. said the strikes were in response to Tehran's attacks on commercial ships in the Strait of Hormuz. Announcing the operation, U.S. Central Command CENTCOM said the strikes were conducted using precision-guided munitions and were aimed at degrading Iran's ability to threaten international maritime commerce. The Iranian military said coastal bases and civilian facilities were struck in the provinces of Hormozgan and Mashhad. According to the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, strikes also hit Bandar Mashhad in southwest Iran. IRGC said it had responded to the strikes by targeting U.S. assets in neighboring countries as sirens went off in Bahrain and Kuwait. India is holding on to its crown as the world's fastest growing major economy, with the International Monetary Fund IMF projecting it to grow at 7% during the current calendar year. IMF's flagship biannual report, the World Economic Outlook Update, released today, projected India's gross domestic product to moderate in the next calendar year to 6.4%. In sports, the 8th Khelo India Youth Games 2026 will be hosted by Telangana. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia made the announcement today. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semifinals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semifinal with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semifinals. That is all in the news at 9. Good night.
12: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं, समय हुआ है फिल्म संगीत का। आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल चाहता।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

श्रोताओं, अभी आपने उदित नारायण की आवाज में हमराज फिल्म का ये गीत सुना। आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म से ये अगला गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं और अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय।
1: तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिर रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।

0: वो नॉर्मल कंडीशन कहलाती है, जब ठंडा है 30-36 लानीना कंडीशन। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, ये वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जिसका 30-36 टेम्परेचर था, थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर 1000 किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां के प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4-5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर हो जाती है, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलनीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलनीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलनीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एलनीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सब को मौसम विभाग ने एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती है, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आप तो ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ देन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहाँ होती है, और वो इसलिए जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहाँ बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरीगेशन कवरेज जो है, जहाँ पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहाँ पर है अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है, मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें करीब में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरी

0: जा रही हैं कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरी पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरी उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगले स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिशें नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जैसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप भाविक जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वैरायटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगे, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वैरायटीज तैयार है। आपने बड़ी अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हो जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने का मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो आप सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन होना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पैसे सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है, एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज से हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है तैयारी शुरुआती अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया
1: जी,
2: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है उनको, तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, अब बैड वेदर है जब बताया कि भाई एलिनो है, इस बार मानसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?
1: बिल्कुल,
2: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो है बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स हो।

0: के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात ये कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ही मेरे को और स्ट्रेस देना पड़ेगा, हमें इरिगेशन जो है ना कैनाल इरिगेशन और दूसरे इरिगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे बारिश कम हो जाए बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती, वहां पर फंगस नहीं आती है और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोई कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य से ज्यादा है पर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसने आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी पर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर कैन को छोड़ दीजिए बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिए, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल लिए और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट हैं उसमें उन्होंने डेवलप की है बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वेराइटी रिलीज कर दी बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वेराइटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कॉपरेटिव संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या। और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की अल्टीमेटली बड़ी एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती भी हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है कॉटन में कम पानी चाहिए लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि एक बार इसको लगाइए पानी भी बचेगा आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहाँ पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है, देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है, इस बजट में भी विस्तार की बात आई है। एआई की बात

0: हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटर शेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है, हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटर शेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जब ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज है या पोल्स है या लेक्स है उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पे कब हम इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई है, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
0: बिल्कुल, इसलिए हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस और खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप की इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है, पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश की बात करना है, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा, तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है, और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पर किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर
2: एक जो वहाँ का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता हुआ अपने बंदों को देगा दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज शुद्ध मानता हूं वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इम्पोर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए आज की डेट में जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज चलेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्वयं पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया वो इतना नहीं है कि आपको सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, वहां से जो हम मौसम आधारित एडवाइजर देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होके, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और चार नहीं पांच नहीं एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
0: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सबसे भी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सेप्टेम्बर उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश हुई है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है, या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली है, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार है, पढ़े लिखे भी है, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एल्निनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: चर्चा का विषय है
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं, समय हुआ है राजस्थानी लोकगीतों के कार्यक्रम, राजस्थानी लोक संगीत का। तो लीजिए सुनिए ये लोकगीत।

गुजरी तेरे को लटन है छत की बिजली कथ गोर नहीं कहो जाज नहीं तेरे नैनो भई गजली प्रेम गुलेला फेंक दिया तेरी फूट गई शिरकी गजली जाय पुकारो राजा नंद के आगन न्याव नहीं मथुरा नगरी।

da ne da ne su po za.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत और हम आपको सुनवा रहे हैं हुसैन खान जैसलमेरी और साथियों की आवाज में कुछ लोकप्रिय लोकगीत। तो लीजिए सुनिए ये अगला गीत।

संपत्त होवे तो घर भला, नी तो भला परदी।

Yeah,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत और हम आपको सुनाते हैं ये गीत उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है फिजा।

श्रोताओं, अभी आपने उदित नारायण और प्रीति उत्तम की आवाज में गदर फिल्म का ये गीत सुना। आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, के आवाज में। फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

0: से खुश होता पीछे क्यों आते हो फूल कभी तो हजार तोहफे आखिर क्यों लाते हो।
1: अपना नाम नहीं बताया आपने, कॉफी पीने चलेंगे।

0: बुलाए
1: फर्स्ट मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे तो मुड़ जाए, अभी किसी के है, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है?
4: बेचारी,
3: मैं छोड़ आऊँ?

0: राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भावरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है, दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है, जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: अभी आपने अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में हम तुम फिल्म का ये गीत सुना। आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों को, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: सभी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस